हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-70

0: 08 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार।

sienten. किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और इसी के साथ आज का वंदन

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारुबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10:00। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11:00 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12:00 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1:00, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3:00। तीन बजकर 30 पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग 2, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4:00। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर।

आप सुनेंगे जो कि हमने आपको पहले भी बताया, विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जायरात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गजवाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोक वाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जसलमेल क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारूबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फागुन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

धीरे धीरे होले होले नशा ये पिलाया किसने, तीर ये छुप के चलाया किसने, ये मिट

आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायक कलाकार भारत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुनेंगे उन्हीं के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, बरसात की एक रात, इस फिल्म से है। साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों ने।

श्रोताओं, भारत भूषण जी भले ही स्वयं गायक नहीं थे, लेकिन संगीत प्रधान फिल्मों में उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली रही कि उनका नाम सुनते ही मधुर गीतों की पूरी दुनिया याद आ जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। मोहम्मद रफी की आवाज है, रचना शैलेंद्र की, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं शबाब फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद की धुन।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: और आइए अब सुरैया की आवाज में सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत। कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और हंस राज बहल ने इसकी धुन बनाई है।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम मल्हार, मुकेश की आवाज, कैफ इरफानी के बोल, रोशन का संगीत।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। चलिए आगाज करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, धुन बनाई थी रोशन ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी, फिल्म का नाम बरसात की रात।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: और आइए अब आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनवाते हैं फागुन फिल्म का ये गीत। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर की धुन।

0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उड़ती है बादल
1: बालों के,
0: खिले हैं गुलशन
1: गालों के,
0: यही तो मौसम
1: आंखों से भी नैना है। सुनो जी कहना,
0: क्यों माने
1: संभल के चलना,
0: क्या जाने
1: यही तो मौसम।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में अब आपको सुनाते हैं

शैलेंद्र का रचित ये गीत सुनिए अब जिसकी धुन बनाई है एस एन त्रिपाठी ने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन

एफएम बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने

हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभी
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है चाहे वह सुधार जीएसटी फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है बल्कि ये एक यात्रा है हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं खासकर हमारे जैसे देशों के लिए
6: स्पेशली द कंट्रीज लाइक ours.
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद

0: नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं मीत ब्रदर्स और शिप्रा गोयल की आवाज में। कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स और अनजान का संगीत, फिल्म का नाम वेलकम बैक।

FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

तो आइए सबसे पहले रोज की तरह कर लेते हैं कुछ अच्छी सी बात। आस्था अस्ति चेत मार्ग अस्ति, यानी कि आस्था है तो रास्ता है। इफ देयर इज अ फेथ देन देयर इज अ वे, यानी कि दोस्तों जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, जो भी रास्ता आप निर्धारित करें अपने जीवन के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आस्था रखिए।

और दोस्तों अच्छी सी बात के बाद अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक तो बनता ही है, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज के इस मॉर्निंग इंफॉर्मेशन प्रोग्राम का सबसे पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको करवा देते हैं हमारी पावरफुल टीम से परिचय। तो श्रोताओं ट्रांसमीटर पर है पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख। वहीं कंट्रोल रूम से टेक्निकली प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं इंजीनियर सुनील जयपाल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए म्यूजिकल ट्रैक हमें सुनाएंगे आज शराफत अली। और एफएम उद्घोषक है सत्येंद्र। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजेश लामरोड। और इन सब के साथ आप ही के जैसे दो रेडियो लवर्स हाजिर है न्यू नूतन सोनी और
1: श्रोता नूतन सोनी के साथ मैं हूँ सीमा शर्मा। जो भी आप बांटते हैं वही आपके पास पड़ता है, चाहे वो धन हो या अन, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या मोहब्बत। इसलिए श्रोताओं हमेशा सोच समझ कर बांटिए क्योंकि यही एक दिन लौट कर आपके पास अवश्य आना है। और नूतन जो भी हम सोचते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है और अपने लिए रखने की इस बात सोचते हैं तो वो जो बात होती है वो कुछ गलत हो जाती है क्योंकि वहाँ हम अपनी एक ऐसी चीज़ को यानी कि स्वार्थ की जो भावना है उसको पनपने देते हैं। इसलिए अगर हम कुछ अच्छा बांटेंगे तो बहुत कुछ अच्छा लौट कर हमारे पास आएगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत।

श्रोताओं, प्रोग्राम में कर लेते हैं खास बात, और खास बात तो आज बड़ी ही खास है, वो ये कि डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि डीएमडी के दूसरे चरण का सफल परीक्षण कर लिया है, और इसके बाद तीसरे चरण में एडीएएच और एडीएएम नाम की नई इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित कर रहा है। ये मिसाइलें जो है ना दोस्तों, अत्यधिक आधुनिक होगी, और इसमें जो है उड़ान के दौरान ये मिसाइलें रास्ता बदल सकेंगी और कई परमाणु वारहेड ले जाने वाली मिसाइलों को भी लक्ष्यों तक पहुंचाने से पहले नष्ट कर सकेंगी। यानी भविष्य में दुश्मन की आधुनिक मिसाइलों के खिलाफ भी भारत के पास जवाब होगा। इसी के साथ जो है हिंदुस्तान की जमीन तक दुश्मन की मिसाइलें पहुँचने से पहले ही आसमान में ही दम तोड़ देगी, और इसी के साथ क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो सुदर्शन चक्र का कवच है वो और भी मजबूत होगा। इस सफलता के साथ जो है स्वदेशी बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं उसका रास्ता भी साफ हो गया है, और इसका उद्देश्य सिर्फ मिसाइलों को रोकना ही नहीं श्रोताओं, बल्कि देश के शहरों और नागरिकों को ऐसा सुरक्षा कवच देना है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा।

0: अपनी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नूतन, जैसे गर्मियां जो हैं वो तो सर चढ़कर बोल रही हैं, और गर्मियों में हम ये देखते हैं कि हमारी जो है ना एनर्जी है, हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, मांसपेशियों का दर्द कह लो या फिर सुस्ती कह लो या थकान कह लो, कई बार हाथ पैरों में बहुत जलन जो होती है, ये भी हमें इस दौरान देखने को मिलती है। तो तुम्हें क्या पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी परेशानियां जो हैं, इसकी निजात पाई जा सकती है अगर हम रेगुलर बेसिस पे शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए एक चम्मच कुछ खाएं तो।
1: क्योंकि सूरज को तो हम उन महाशय को तो हम नियंत्रित कर नहीं सकते, जो नियंत्रण करना है वो हमें खुद ही करना है।
0: तो एक चम्मच कुछ जो है वो है गुलकंद। जी हां श्रोताओं, गुलकंद जो है गर्मियों में विशिष्ट आयुर्वेदिक टॉनिक का काम करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करके हमारे ब्रेन को पावर प्रदान करता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं श्रोताओं, और उसमें शरीर को ठंडक पहुंचाकर हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है और हीट स्ट्रोक से बचाने में बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ गुलकंद जो है ये पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है श्रोताओं, और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। गर्मियों में गुलकंद जो है शरीर को ठंडक देकर डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी इन सभी से हमारा बचाव करता है, और नियमित सेवन से हम ये देखते हैं कि पेट की जो गर्मी है वो कम हो जाती है, जिससे कई लोगों को पेट की गर्मी से नूतन मुंह के छाले भी हो जाते हैं, उसमें भी इससे लाभ मिलता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं उनसे गुलकंद जो है त्वचा में निखार भी लाता है, आपके फेस पे अगर एक्ने हैं तो उनको कम करने में मदद भी करता है। तो देख लो इतनी सारी इसमें खूबियां हैं, तो फिर हम क्यों दूर रहें गुलकंद से। ये मन और दिमाग को शांत रखकर तनाव, चिंता और अनिद्रा की जो समस्या है उनको भी कम करता है। तो करना क्या है आपको, सिर्फ खाना ही तो है एक चम्मच गुलकंद, तो खा लीजिए और शरीर की गर्मी को नियंत्रित कर लीजिए।

श्रोताओं, आज के दिन में और एक विशेष बात है कि आज है राजस संक्रांति। ओडिशा में इसे बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है श्रोताओं, और ये त्यौहार जो है मानसून के आगमन का उत्सव होता है। राजा संक्रांति भी इसे कहा जाता है। पहली राजा उत्सव का दूसरा दिन होता है जो 3 दिवसीय उत्सव होता है, और कभी कभी राज्य में ये उत्सव 4 दिनों तक भी चलता है। राजा संक्रांति दिवस को झूला उत्सव के नाम से भी सभी जानते हैं, क्योंकि इस दिन वृक्षों की शाखाओं पर कई प्रकार के झूले लगाए जाते हैं और जो लड़कियां होती हैं लोकगीत गाते हुए झूलों पर खेलती हैं, झूले झूलती हैं। और पहली राजा इस उत्सव का पहला दिन है, राजा संक्रांति दूसरा, जबकि तीसरे दिन को बासी राजा यानी कि पूर्व राजा कहा जाता है। श्रोताओं, राजा संक्रांति को मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वास्तविक राजा। जी हाँ, इस त्योहार के दौरान लोग धरती पर नंगे पैर नहीं चलते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मॉनसून की बारिश शुरू होने से पहले धरती को आराम देना चाहिए। महिलाएं जो हैं घरेलू कामों से और किसान कृषि कार्यों से अवकाश लेते हैं। सभी लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद में मग्न रहते हैं। महिलाएं जो हैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और विशेष रूप से बनाए गए झूलों पर झूलने में समय बिताती हैं।

इन झूलों को दांडी डोली, पटा डोली, चरखी डोली और राम डोली जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और श्रोताओं, अविवाहित युवतियां जो होती हैं वो भी पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और अपने पैरों पर आलता जो होता है उसे लगाती हैं। वसुमती स्नान उत्सव का अंतिम दिन होता है, जो कभी कभी चौथे दिन भी पड़ता है। इस दिन धरती की देवी का प्रतीक माने जाने वाला चक्की का जो पत्थर होता है श्रोताओं, उसको महिलाएं हल्दी के लेप से स्नान कराती हैं। स्नान के बाद इसे फूलों से सजाया जाता है और इसके बाद धरती माता को जो भी मौसमी फल होता है वो अर्पित किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए उत्सव से एक दिन पहले घरों में चक्की के पत्थरों की सफाई की जाती है और मसालों को तैयार करने का काम किया जाता है और इस दिन को सजा बाजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है तैयारी का दिन। जी श्रोताओ, कितना अलग सा त्यौहार होता है, लेकिन कहते ना कि हर संस्कृति, हर बात हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। धरती को आराम देने का दिन हो जाता है राजस संक्रांति।

श्रोताओ 9 बजने वाले हैं और इस समय हम ब्रेक लेते हैं न्यूज़ के लिए, तो आइए ले लेते हैं ये ब्रेक और फिर मिलेंगे आपसे इस प्रोग्राम में 9:10 पर।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में

0: गिरावट, आज पांच संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन दो दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पांच जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली CMHO ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है। जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है, यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और VMOU के कुलगुरु प्रोफेसर BL वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी AI आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य

0: राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं।
1: जिसमें इस बार की हमारी थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा ANM घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
2: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल, पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मानसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार के बाद आपके फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें हम करते हैं बहुत ढेर सारी बातें और देते हैं ढेर सारी जानकारियां।
1: जी श्रोताओं, जानकारियों की बात नूतन ने कही है तो बता दूं कि आज 14 जून है और 14 जून सन 1595 को सिखों के छठे गुरु, जिनका जन्म माता गंगा और पिता गुरु अर्जुन सिंह के यहाँ हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरु हरगोविंद सिंह जी की। गुरु हरगोविंद सिंह ने एक मजबूत सिख सेना संगठित की थी और अपने पिता गुरु अर्जुन के शासकों के हाथों में 1606 से पहले सिख जो शहीद हुए थे उनके

0: निर्देश अनुसार सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया था। गुरु हरगोविंद सिंह 25 मई 1606 को सिखों के छठे गुरु बने थे श्रोताओं, और वे इस पद पर 28 फरवरी 1644 तक रहे। गुरु हरगोविंद सिंह जी जो थे, ये पहले सिख पंथ निष्क्रिय था, उसको इन्होंने बहुत ही कहते ना कि एक गाइडलाइन दी और प्रतीक रूप से अस्त्र शस्त्र धारण करके हरगोविंद गुरु के तख्त पर बैठे थे। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध प्रशिक्षण और युद्ध कला में लगाया था। बाद में वो कुशल तलवारबाज और कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर हो गए थे। तमाम विरोधों के बावजूद हरगोविंद जी ने अपनी सेना संगठित की और अपनी शहरों की किलेबंदी की थी श्रोताओं। 1609 में उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण किया। इसमें संयुक्त रूप से एक मंदिर और सभागार है, जहां सिख राष्ट्रीयता से संबंधित आध्यात्मिक और सांसारिक मामलों को निपटाया जा सकता है।
1: इसी के साथ श्रोताओं, आज जयंती मना रहे हैं हम राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता केदार पांडे की, जिन्होंने मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 12 नवंबर 1980 से 1982 तक भारत सरकार में रेल मंत्री के रूप में काम किया था।

0: श्रोताओं, रक्तदान महादान है क्योंकि ये किसी को नया जीवन देने का अवसर प्रदान करता है और आपका थोड़ा सा रक्त किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। और रक्त का कोई कारखाना तो होता नहीं है श्रोताओं, इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर सेवा है श्रोताओं। और जब आप रक्तदान करते हैं तब किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण बन जाते हैं। तो इसी जो ये जो सोच है रक्तदान का जो काम है, इसको महत्व देने के लिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इसी पर बात करने के लिए हम फोन आउट माध्यम से आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल से, जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एम्स जोधपुर में। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, आज विश्व रक्तदाता दिवस है सर, तो सबसे पहले हम इसके महत्व पर ही बात करना चाहेंगे सर।
1: तो मैम देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस एक्चुअली आज कार्ल, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। इन्होंने ही हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, जो जिससे हमें पता चलता है पेशेंट का क्या ग्रुप है एबीओ, इसकी इन्होंने डिस्कवरी करी थी और इसी की खोज करी थी। इससे हमें सबका ब्लड ग्रुप पता चलता है और इसलिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का ये भी महत्व है कि आज हम उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, खून कहीं बनाया नहीं जा सकता, वो एक एक इंसान से ही दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। तो इसी की मानता, इसी की अहमियत को रखते हुए आज ये दिन मनाया जाता है। आज डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे है।
0: जी सर। और सर, किस एज ग्रुप के व्यक्ति का जो है वो रक्तदान कर सकता है, कौन से एज ग्रुप के जो लोग हैं?
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 18 से 65 वर्ष के लोग रक्तदान कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि जो पहली बार डोनेट करने आ रहे हैं वो 60 साल के बाद नहीं कर सकते। मतलब जो पहली बार डोनेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनकी उम्र 60 साल तक ही वो कर सकते हैं, पर जो पहले डोनेट कर चुके हैं वो 65 साल तक डोनेट कर सकते हैं।
0: जी सर, बिल्कुल। और गैप कितना रखना चाहिए सर, कितने अंतराल से आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं?
1: हाँ, तो इसमें मैम हमारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बना रखी है वो ये कहती है कि जो पुरुष हैं वो हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में। इसमें इनफ टाइम है कि आराम से हमारा खून इस बीच में पूरा बन सकता है, क्योंकि खून तो डोनेशन के कुछ हफ्तों में ही पूरा बन जाता है। फिर भी 3 महीने पुरुषों के लिए और 4 महीने महिलाओं के लिए ये अंतरकाल रखा गया है।
0: जी सर। और कौन सी बीमारी के जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं?
1: मैम इसमें मैम हमारे आते हैं कुछ लोग जो परमानेंट, बिल्कुल उनसे कभी हम नहीं दे सकते जिंदगी में, कुछ होते हैं टेम्पररी, उनको रखा जाता है कि अभी नहीं उनसे डोनेशन करवा सकते, पर बाद में जब ठीक हो जाए तो कर सकते हैं। इसमें परमानेंट जो लोग हैं जिनसे हम नहीं कभी रक्तदान ले सकते वो हैं एचआईवी के पीड़ित लोग, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, या जिनको कोई हार्ट की बीमारी, हृदय रोग हो रखा हो, कैंसर की बीमारी है ना, जिनको क्रोनिक लिवर या किडनी का रोग हो रखा हो, और जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो, सिर्फ इंसुलिन

0: डिपेंडेंट डायबिटीज वाले लोगों को हम नहीं कर सकते। और अगर हम टेम्पररी डेफरल की बात करें तो जैसे जिनको को मलेरिया हो रखा है उनका 3 महीने तक हम नहीं ले सकते, डेंगू में 6 महीने तक नहीं ले सकते,
1: जी सर,
0: और कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो तो उसमें 12 महीने तक नहीं ले सकते। तो ये हमने इन मेनली इन सब लोगों से हम नहीं ले सकते।
1: जी सर, यानी कि जो भी श्रोता सुन रहा है यदि वो आज जागरूक होते हैं, अगर वो मूड बनाता है रक्तदान का, तो ये जो आपने जो भी डिजीज बताई वो वाले जो लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते। और सर वैसे तो रक्तदान के लाभ ही नजर आते हैं, लाभ बहुत होते हैं, लेकिन कोई संभावित नुकसान भी है सर?
0: नहीं मैम, एक्चुअली लाभ ही है, कोई भी नुकसान नहीं है। इसको लेके बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि कोई डोनेशन से, ब्लड डोनेशन से वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्वस्थ डोनर है वो, उनको कोई कमजोरी नहीं होती, कोई इम्यूनिटी उनकी कोई कम नहीं होती।
1: ये बहुत मिथ है सर अभी भी।
0: हाँ, ये सारी मिथ्स हैं, है ना, क्योंकि बॉडी 24 से 48 घंटे में उनका जो भी ब्लड लॉस हुआ होता है उसका फ्लूइड कंपोनेंट वो रिकवर कर लेता है, और रेड सेल जो भी उनके डोनेशन से गए होते हैं वो कुछ ही हफ्तों में भरपाई हो जाती है बॉडी से। तो कोई भी कमजोरी कुछ भी नहीं होती। और रक्तदान के बाद हम हर डोनर को उस दिन रेस्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने के लिए सारी पोस्ट डोनेशन एडवाइस हम अच्छी तरह देते हैं।
1: जी सर, अब सर मिथ की बात हो ही रही है तो एक हमने सुना है कि जो लोग बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: मैम हाँ, पर तुरंत नहीं कर सकते। टैटू या किसी ने पियर्सिंग करवा रखी है या किसी ने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लिया है तो उनको 12 महीने तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे उन पे हमें पता, उन ये इन सब प्रक्रियाओं से हेपेटाइटिस का रिस्क होता है। तो हमें 1 साल तक वो नहीं कर सकते, 1 साल के बाद वो बेचिचक दान रक्तदान कर सकते हैं।
1: ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बॉडी पर टैटू बनवा लिया है तो वो लाइफ टाइम ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है?
0: हाँ जी
1: जी सर,
0: बिल्कुल,
1: और
0: ऐसा बिल्कुल नहीं।
1: रक्तदान के बाद क्या बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए सर?
0: हम देखिए, रक्तदान के बाद हम हर डोनर को यही एडवाइस करते हैं कि पहले उस दिन वो उस दिन एक्स्ट्रा पानी पिए हैं, ज्यादा पानी पिए या नींबू पानी लें, शिकंजी लें, और उस दिन वो ज्यादा कसरत, अगर लोग कसरत करने के आदी हैं, ज्यादा कसरत ना करें, ज्यादा भारी चीजें ना उठाएं, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह ना करें। फिर हम उनको एडवाइस देते हैं कि अगर उनको मान लो कभी चक्कर आ रहे हैं डोनेशन के बाद, वो घर चले जाओ, हल्का सा भी इनको लग रहा है तो वो बैठ जाए, अपने पैर ऊपर कर लें, टाइट कपड़े पहन रखें तो उनको थोड़ा सा लूजन कर दें, और सांसें डीप सांसें लें, और हमें फिर कॉन्टैक्ट करें अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, रक्तदान के टाइम पे जो सुई लगाई जाती है वहां पर अपन एक बैंडेज लगाते हैं। हर रक्तदाता को ये ध्यान रखना है कि डोनेशन के बाद वो अगले 5 घंटे तक उस बैंडेज को नहीं हटाएं और उसको ड्राई रखें, उसको गीला ना करें, और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें संपर्क करें, या अगर उनको लग रहा है कुछ नीलापन उनके वहां से, उनको स्किन के अंदर, अपनी त्वचा के अंदर दिख रहा है कि खून फैला है, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी देर में कोल्ड पैक लगाएं 24 घंटे तक। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि हम लोगों को, हर रक्तदाता को बोलते हैं कि खून के बाद उनको आयरन रिच फूड खाना है, और हमारे इंडिया में आयरन रिच फूड बहुत सारे हैं, पालक, मेथी, सरसों, दालें, छोले, तो हम उनको सारी एडवाइस करते हैं कि ये चीजों का ध्यान रखना है रक्तदाता के बाद, रक्तदान के बाद।
1: जी सर, और एक बार में कितना रक्तदान किया जा सकता है सर?
0: तो इसका मैम, एक बारी में अगर आपका वजन 45 किलो है तो 350 ml लिया जाता है, और किसी का 55 किलो है उनसे 450 ml लिया जाता है, यानी कि आधे लीटर से भी कम खून निकाला जाता है, और हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है।
1: बिल्कुल सर, और हम बात करें रक्त की आवश्यकता की, जरूरत की, तो किन किन बीमारियों में जो है रक्त की आवश्यकता होती है?
0: मैम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो आएगा कि जो हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा पेशेंट होते हैं, जो दुर्घटना पीड़ित होते हैं या चोट पीड़ित होते हैं, जो बिल्कुल आते हैं इमरजेंसी में, उन पेशेंट्स में बड़े ऑपरेशन जैसे कार्डियो थोरैसिक सर्जरीज में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में रक्त खून की जरूरत पड़ती है, सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स में, थैलेसीमिया, सिकल सेल, कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ल्यूकीमिया के पेशेंट, हीमोफीलिया, डेंगू, इन सब पेशेंट्स में हमें रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है।
1: एक सर थैलीसीमिया बीमारी के बच्चों को बार बार

0: बार ब्लड देना होता है सर,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ जी
0: उनके लिए क्या व्यवस्था होती है?
1: मैम, हमारे पास उनके लिए ये व्यवस्था, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर 2 से 4 हफ्ते में थैलेसीमिया के बच्चों को आना पड़ता है ब्लड चढ़ाने के लिए, तो उनको पहली बात तो निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, उनको किसी भी रिप्लेसमेंट डोनर की जरूरत नहीं होती, उनको कोई भी डोनर साथ में लाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारे एम्स जोधपुर में ल्यूको डिप्लीटेड स्पेशल ब्लड भी मिलता है, जिनमें उस ब्लड में उनके लिए स्पेशल हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कोई भी ल्यूकोसाइट या WBC जैसे कहते हैं उनके, वो रक्त उनके नहीं होता है जो दिया जाता है उनको। और साथ ही हमारे एम्स जोधपुर में उनके लिए एडवांस टेस्टिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि ये थैलेसीमिया के बच्चों में जैसे हम कहते हैं एक एंटीबॉडी, रेड सेल एंटीबॉडी बार बार ही बन जाती है, तो उसकी एडवांस टेस्टिंग भी करी जाती है। तो मेन हर थैलेसीमिया के बच्चे के लिए निःशुल्क रक्त अवेलेबल है।
0: वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा है। और सर, कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करवाना चाहे तो उसको क्या करना होगा सर? जैसे आज हमारी बातचीत सुन के भी बहुत सारे श्रोता इंस्पायर होंगे, और आज वर्ल्ड डोनर ब्लड डोनर डे भी है, तो
1: हाँ
0: किसी
1: जी
0: के मन में विचार आए कि वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा सबसे पहले?
1: मैम, उसके लिए वो कोई भी नजदीकी सरकारी या NGO बेस्ड ब्लड बैंक में जा सकते हैं, या शिविर ब्लड डोनेशन कैंप में जा सकते हैं, जैसे वो ई रक्तकोष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे जाके ये पता कर सकते हैं आसपास उनके एरिया के कौन से ब्लड बैंक हैं और कौन से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं, ई रक्तकोष से उनको पता लग सकता है। वहां पे जाके बेसिक स्क्रीनिंग काउंसलिंग उनको करनी है, जिसमें उनका BP, वेट, हाइट और उनसे बेसिक मेडिकल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पूरे 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर, और फिर उनका डोनेशन हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर 15 से 20 मिनट में ये कर सकते हैं।
0: जी सर, और वो ब्लड डोनेट कर दे, उसके बाद उस व्यक्ति को कूपन या कुछ सर्टिफिकेट मिलता है सर?
1: हाँ जी मैम, तो हर वॉलेंट्री स्वैच्छिक रक्तदाता को डोनेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, ई रक्तकोष से भी वो डोनेशन के बाद अपना प्रमाण पत्र या डोनेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जो भी रिप्लेसमेंट डोनर है उनको उनके पेशेंट के लिए रिप्लेसमेंट कूपन मिला जाता है।
0: जी सर, आज हमारे श्रोताओं को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली है सर, बातों के माध्यम से। और चलते चलते सर, म्यूजिक के बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा सा ही होता है, तो बात करते हैं म्यूजिक की। तो सर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सर, हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे।
1: मैम, मेरे को पसंद है, शायद रोजा मूवी का सॉन्ग था, आप सही बताएंगे, पर तुम मिले दिल खिले।
0: ओके, तुम मिले दिल खिले सर, बहुत अच्छा सॉन्ग है सर। आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर,
1: हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने।
5: जी श्रोताओ, रविवार की सुबह सुहानी लगती जैसे कोई कहानी, चिड़ियों का मधुर संगीत मन को देता नई प्रीत। आओ मिलकर हंसे गाएं, इस दिन को यादगार बनाएं। जी श्रोताओ, संडे यानी कि रविवार केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह की थकान को मिटाकर नई एनर्जी को भरने का अवसर है। तो इस खूबसूरत दिन का स्वागत आप ही जानते हैं कि हम कैसे करते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत दिन को और खूबसूरत हम बनाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट मेहमान का रविवार के साथ। अशोदों, आज के हमारे मेहमान जो हैं और आज के इस रविवार की सुबह को और खूबसूरत जो बना रहे हैं वो हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा। आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पंचकर्मा डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
6: थैंक यू मैडम।
5: सर, जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारा थैंक्स देंगे कि आपने संडे में अपना समय कुछ हमें भी दिया है और हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए आप फोन पर अवेलेबल हैं, तो इसके लिए एक बार और आपका थैंक्स बनता है सर।
6: थैंक यू।
5: सर, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि संडे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है वैसे तो, क्योंकि हम री एनर्जाइज करते हैं खुद को बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो हमारी पेंडिंग लिस्ट होती है, जो पढ़ चुकी होती है, वो भी संडे को ही जो है ख़त्म होती है। तो किस तरीके से आपका संडे शुरू होता है और कैसे ये सफ़र संडे की शाम तक पहुँचता है?
6: जी, एक्चुअल में जो रविवार का दिन है वो हमारी दिनचर्या की शुरुआत इससे शुरू होता है। लेकिन मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि हमारा जो दिनचर्या, जो रविवार की दिनचर्या है, वो शनिवार की रात्रिचर्या से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी रात्रिचर्या अगर प्रॉपर है तो हम उसको प्रॉपर वे में, दिनचर्या को, संडे का जो डे है उसको प्रॉपर वे में एंजॉय भी कर पाते हैं और प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी कर पाते हैं। तो बेसिकली जैसे डे टू डे सीजनल भी होता है कि कई बार ऐसा संडे ऐसा निकलता है कि सैटरडे इतना हेक्टिक होता है, या फिर सीजनली जैसे अभी योगा डेज आया हुआ है तो उसमें पर्टिकुलर समय निकालना पड़ता है उस चीज के लिए।
5: जी।
6: मेरा जो रविवार का जो रहता है बेसिकली वो यू मान के चलिए आप कि सुबह संडे वाले दिन 6 बजे के आसपास मैं उठता हूँ।
5: जी सर।
6: और उठ करके अपना जो रूटीन वर्क है उसमें सबसे पहले हल्का सा वार्म अप करके, पानी पीना कंटिन्यू उसमें रूटीन में रखा है मैंने, और थोड़ा सा वार्म अप करके बाहर राउंड करके आता हूँ। उसके बाद में हमारे जस्ट सामने कुछ पक्षियों के लिए हमने वो बना रखा है तो उसके अंदर उनको, पक्षियों को दाना डालना, वो उसमें करीबन 15-20 मिनट मेरे चले जाते हैं।
5: जी सर।
6: उसके बाद में रूटीन वर्क के अंदर थोड़ा सा चाय का लेते हैं और अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं।
5: जी सर। तो सर बिल्कुल वो रूटीन जो है आपका, आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें कि मॉर्निंग की शुरुआत आपने बहुत पॉजिटिव की, आपने बिल्कुल अपने आप को फ्रेश भी केयर के एकदम से कहते ना कि वार्म अप भी किया आपने, और जो बहुत प्यारी चीज़ लगी कि आप जो सामने पक्षियों का घर है उसमें दाना भी आप उनको डाल के आए, और ये सारी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं सर जब खुद को अपन वार्म अप कर लेते हैं।

0: हैं, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ आसपास के माहौल का भी ध्यान रखते हैं, तो सुकून जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। फिर आपका सफर किस तरह आगे बढ़ता है?
1: उसके बाद में हल्का सा वार्म अप होने के बाद में
0: जी
1: 5 से 10 मिनट का हल्का जो बॉडी के नीडफुल जो भी अपना एक्सरसाइज और योग का प्रोग्राम रहता है उसको
0: जी
1: एडोप्ट करता हूँ मैं।
0: ओके
1: बेसिकली फुल योगा नहीं करके जो रूटीन वर्क के अंदर अगर लगता है कि इस पार्ट्स के लिए ये किया जाना चाहिए, जैसे गर्दन के लिए किया जाना चाहिए, कमर के लिए, घुटने के लिए,
0: जी सर
1: बेसिक बेसिक थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वो रखते हैं और हल्का सा अनुलोम विलोम का श्वास प्रवास की ओर रखते हैं।
0: जी जी सर योगा के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज आपकी हो गई, आपने खुद को रिफ्रेशिंग, आप मोड पे आ गए हैं, फिर बात आती है सर ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे किस तरह की चॉइसेस आप रखते हैं? मतलब जो डेली रूटीन से हटकर कुछ स्पेशल होता है या फिर नॉर्मल होता है, या आपकी पसंद का होता है या फैमिली की पसंद का होता
1: फैमिली के पसंद से रखते हैं एक्चुअल में।
0: है?
1: वो
0: जी सर
1: बेसिकली रूटीन में जो चलता रहता है वो तो होता ही है। कभी कभी हल्का सा ये मान लीजिए कि दलिया को प्रायोरिटी देता हूँ मैं, मिक्स
0: ओके
1: वेजिटेबल के साथ में दलिया बनवाना या उपमा बनाना।
0: जी सर
1: तो हमेशा एक जैसा रूटीन नहीं होता संडे का,
0: जी
1: लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है उस दिन ये बन जाता है।
0: जी
1: बाकी बच्चों के हिसाब से जो फैमिली में बनता है वही मैं भी अडोप्ट करता हूँ।
0: सर यहाँ एक और दिमाग में, दिल में बात आ रही है, क्या कभी किचन की भी सैर होती है संडे को?
1: हाँ बेसिकली हमारा जो मोटिव है,
0: जी
1: हम क्या है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और
0: जी
1: आयुर्वेद के अंदर स्पेशली अगर आपको थोड़ा बहुत किचन का वर्क आता है तो ही आप आगे चल करके एक्सपर्ट हो सकते हैं।
0: राइट सर
1: तो किचन में मेरा भी पूरा इंटरेस्ट रहता है, बहुत
0: जी
1: सारी चीजें हैं जो मैं भी बना लेता हूँ
0: जी
1: रूटीन
0: जी
1: में
0: जी
1: जब
0: तो
1: कभी
0: बस हम वही आ रहे
1: वहां।
0: थे कि ये जो उपमा, ये दलिया, ये जो आपने बात कही, कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली भी चाहती है कि आज तो कुछ डिफरेंट टेस्ट हाथों से आए, तो क्या ये कभी कभी आप भी बनाने का शौक रखते हैं?
1: हाँ, मैं भी बनाने का, एक्चुअल में मुझे चपाती बनाने का रहता है, चपाती मैं अच्छे से बना लेता हूँ और थोड़ा सा
0: ओके
1: भिंडी की सब्जी भी मुझे बना
0: क्या
1: लेता
0: बात है
1: हूँ।
0: सर, बहुत बढ़िया। नहीं, हमारे श्रोता जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे आपसे, और जरूर किचन का रुख जो अभी तक नहीं करते हैं वो भी उस तरफ जरूर करेंगे।
1: नहीं, एक्चुअल में करना चाहिए क्योंकि हमेशा डिपेंडेंसी अच्छा नहीं होता
0: राइट
1: है, थोड़ा बहुत अपने के ऊपर भी इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए क्योंकि जीवन के अंदर सब सारी चीजें होती हैं। कॉलेज लाइफ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये चीजें, तो
0: जी
1: फिर
0: जी
1: बाद में धीरे धीरे कभी टाइम मिलता है तो उस चीज को फॉलो कर लेता
0: फॉलो
1: हूँ।
0: कर लेते हैं जी सर। श्रोताओं आपको हम बताएं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर एंड HOD पंचकर्मा डिपार्टमेंट, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और सर अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे की जो क्वेश्चन लिस्ट है उसमें। संडे का दिन एक और खास तौर से स्पेशल बन जाता है। हमारे बहुत पुराने दोस्त जो पीछे रह जाते हैं, कहीं और दिशाओं में चले जाते हैं, आपके जो प्रोफेशन है शायद उसमें आपके साथ नहीं हो, उन्होंने अलग प्रोफेशन अडॉप्ट किया हो, लेकिन संडे एक ऐसा दिन है जो सबको मिलना और मिलाना वाली बात जो है उसे भी उसमें भी हेल्प करता है। तो
1: जरूर
0: क्या
1: जरूर,
0: फ्रेंड्स को भी आप कुछ टाइम देते हैं संडे में?
1: एक्चुअल में मेरा नेटिव तो जयपुर से है और बाकी अभी जोधपुर के अंदर 15 साल से मैं जोधपुर में हूँ 2010 से। तो
0: जी।
1: जो बेसिक जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो तो आउट ऑफ राजस्थान है कुछ लोग, तो कुछ राजस्थान के डिफरेंट सिटीज में होती है तो उनसे तो फोन से ही बातें होती हैं। बाकी अपने जो 15 ईयर्स के अंदर जोधपुर में भी काफी अच्छा सर्किल बन जाता है, जो फेमिलियर हो जाते हैं तो
0: जी सर
1: उनसे मिलकर के उनकी कोई पॉजिटिव बातें होती हैं उनको खुद एडोप्ट करते हैं, उनकी जो लगता है कि उनकी कोई हेल्प हो सकती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं।
0: जी
1: ये रूटीन वर्क रहता है देखो।
0: जी नहीं सर, फोन से भी कांटेक्ट में रहना, उनको टाइम
1: हाँ
0: देना, वो एक
1: फोन
0: अलग
1: से
0: चीज़ हो
1: कांटेक्ट में तो
0: जाएगी
1: आउट ऑफ
0: जो।
1: जो राजस्थान या जोधपुर से हैं उनसे
0: हाँ
1: फोन से
0: हाँ
1: कांटेक्ट में रहते हैं, बाकी जोधपुर से जो रहते हैं उनसे बेसिकली एवरी संडे को तो नहीं होता पर मंथ में एक दो बार तो संडे
0: हो ही जाता
1: के बाद हो जाता है।
0: है जी सर। सर जैसा कि आपने शुरू में बताया कि चिड़ियों को दाना डालना, तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपके दिल में कहीं ना कहीं रहती हैं, तो
1: नहीं
0: क्या
1: वो तो
0: उस
1: बेस्ट
0: तरफ?
1: है, वो
0: हाँ
1: उसके उस उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मन में रिगार्ड्स नहीं है किसी के लिए तो फिर अपना लाइफ का जीने का कुछ मतलब ही नहीं है।
0: जी
1: और बेसिकली जो मेरा मोटिव रहता है वो है अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत समय समाज के लिए देश के लिए दिया है,
0: जी
1: तो किसी भी एंगल में अगर उनका अपन मदद कर सकते हैं, उनसे बात करके, उनके ट्रीटमेंट करके, उनको मेडिसिन दे करके, तो मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं समाज में देश में कंट्रीब्यूशन है।

0: जी सर, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस सब में आ जाए तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है।
1: जी जरूरी है।
0: सर ये तो बातें हो गई, लेकिन एक और अभिन्न हिस्सा मैं कहूँगी संडे का रहता है, वो है मूवीज़ या फिर म्यूज़िक। तो क्या मूवीज़ को भी टाइम देते हैं आप संडे में?
1: पहले कॉलेज लाइफ में तो था, अभी थोड़ा कम है क्योंकि रूटीन वर्क के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग वाला है, पंचकर्मा डिपार्टमेंट है, तो
0: जी
1: उसमें कई बार संडे को भी हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता
0: जाना
1: है
0: पड़ता
1: उनको,
0: है।
1: और मैनेज करना पड़ता है, जाएंगे भी नहीं तो पूरा मैनेजमेंट चलता है वहाँ,
0: जी सर,
1: तो
0: जी सर,
1: उसमें बिजी रहना पड़ता है। तो मूवीज को तो नहीं है, लेकिन बेसिकली जैसे मंदिर में कभी जा करके थोड़ा सा अपना जो चेंटिंग्स है
0: हाँ
1: या
0: जी
1: पूजा है वो जरूर मैं फॉलो करता हूँ उस चीज
0: जी
1: को।
0: जी तो सर म्यूजिक कभी सुनते हैं? कभी मान लीजिए चलिए मूवीज तो
1: हाँ म्यूजिक
0: नहीं,
1: सुनते हैं, जब म्यूजिक में वो पार्ट अलग हो गया ना, म्यूजिक में जैसे भजन वाला पार्ट है
0: भजन
1: तो
0: वाला
1: उसको मैं फॉलो
0: पार्ट।
1: करता हूँ, बाकी सॉन्ग्स में नहीं करता,
0: अच्छा,
1: जैसे शिव जी के भजन है अपने,
0: हाँ
1: हनुमान
0: जी
1: जी के भजन है, इस तरह
0: हाँ
1: के
0: जी
1: भजन को मैं फॉलो करता हूँ,
0: नहीं
1: सुनता
0: सर
1: भी हूँ, एंजॉय भी करता हूँ।
0: बिल्कुल, और म्यूजिक किसी भी फॉर्म में हो सर, दिल को सुकून तो देता ही है।
1: हाँ बिल्कुल 100% इसको सुकून देता है।
0: जी सर, आप जिस फील्ड से हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज एग्जीक्यूट करने की आपकी कोशिश जरूर रहती होगी।
1: हाँ बेसिकली मेरा मोटिव जो स्टार्टिंग से यही रहा है कि मेरा अंदर से कुछ इस तरह की फीलिंग्स है कि सीनियर सिटीजन जो बेसिकली अबो 50 एज हैं उनके लिए कुछ इस तरह का प्रोग्राम्स, इस तरह के कैंप्स में लगाऊं जिससे उनका जो सर्विस है वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि हाँ हमने समाज में जो सर्विस दी है उसका
0: जी
1: एक प्रॉपर आउटकम देने वाले कोई है हमारे पास
0: जी
1: में। तो हमने घुटने के इलाज और कमर के इलाज के लिए कुछ स्पेशल थेरेपीज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं और
0: अच्छा
1: कैंप्स भी लगाते हैं, तो
0: ओके
1: सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारी जो प्रोसेस होती है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है वहाँ पर प्रोसेस के लिए, तो
0: ओके
1: काफी सीनियर सिटीजन्स है वो 55 है वो आते हैं, घुटने के कमर के लिए और सर्वाइकल के लिए अपना प्रॉपर वे में इलाज लेते हैं वो, और
0: अच्छा
1: क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं वहाँ पर।
0: बहुत बढ़िया चीज़ है सर, क्योंकि एज के इस मुकाम पर पहुंचकर जब पूरी जिंदगी समाज के लिए परिवार के लिए देती है, और इस वक्त जब कुछ सहारे कम लगते हैं तो उसमें ऐसी सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी
1: जरूर
0: सर, वैसे तो आपने अपना जो टेस्ट है सॉन्ग्स के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई गीत होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, कभी कभी गुनगुना लेते होंगे, तो वो गीत हमारे
1: जरूर
0: श्रोता सुनना चाहते हैं।
1: जरूर जरूर जरूर। एक्चुअल में जो मेरा फेवरेट गीत है
0: जी
1: वो शुरू से वो यही रहा है कि पहले भी था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा,
0: जी
1: ये मेरा फेवरेट रहा है और यूनिक है।
0: सर, आपकी जो स्माइल है वो कुछ इसके पीछे की स्टोरी भी शायद बता रही है।
1: ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
0: चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये दो शब्द जो बोले कि पहले से रहा है और जो स्माइल है आपके चेहरे की, उससे हम इस गीत की जो पीछे की स्टोरी है उसे भी समझ सकते हैं, और जो गीत है उसके बोल आप हमारे श्रोताओं को बताएं।

0: सोचा था।
1: तो सर ये जो गीत आपने गुनगुनाया है ये आप अभी भी गुनगुनाते हैं, अभी भी आपका फेवरेट है?
0: हाँ एवरी
1: एवरी टाइम। तो बिल्कुल जो आपकी मन की इच्छा है वो जरूर पूरी हुई होगी, और उस गीत को गुनगुनाते हुए आपका ये जो फेवरेट गीत है इसे हम भी सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। आप हमसे फोन के माध्यम से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सर।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

जी श्रोताओं, ये जो गीत होते हैं ये बहुत अमिट छाप हमारे दिल पे छोड़ जाते हैं, और कुछ और भी ऐसे गीत हैं जिन्हें जब भी हम सुनते हैं तो दिल में वो मूवी, वो अंदाज, वो किरदार और वो सारी बातें जो हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है रिवाइंड में हमारी ज़िंदगी घूम गई है और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी ही बातें हम आपको बताते हैं श्रोताओं। दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर स्टारर फिल्म थी मुगले आजम। जी हाँ, क्लासिक कल्ट मानी जाती है। और इसके जो डायरेक्टर थे के आसिफ, फिल्म को बनाने में उन्हें 12 साल का लंबा वक्त लगा। एक नहीं, चार बार इन्होंने शादी रची। लेकिन अपनी निजी जिंदगी की बात को अगर हम अलग रखें तो इस मूवी के लिए उन्होंने, कहते ना कि बॉलीवुड के सुपरस्टार जो थे दिलीप कुमार साहब, उसको पृथ्वीराज कपूर साहब को, इन सब को लेकर के जो जोड़ी जमाई थी, जो फिल्म बनाई थी, वो आज भी बॉलीवुड की जैम मानी जाती है। और के आसिफ द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जितनी शानदार थी उतनी ही इसकी तैयारी भी की गई थी। श्रोताओं, इस फिल्म को बनाने में एक लंबा वक्त लगा। इस जहीन फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर के आसिफ ने अपने करियर में केवल दो ही फिल्में बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम के आसिफ जो हैं इनकी बात क्यों कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज है 14 जून, और 14 जून 1944 को इटावा में जन्म हुआ था के आसिफ का।

0: दोस्तों दरअसल आज हम जिस क्लासिक दौर को याद करते हैं उसकी शुरुआत जो है वो के आसिक से ही हुई थी। फिल्म के सेट से लेकर हर सीन में क्या और क्यों रखना है इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आसिफ को ही मालूम रहता था। उसी का नतीजा है कि फिल्म में पेश चाहे शीश महल वाला सेट हो या फिर फिल्म के लिए छपे स्पेशल टिकट हो, और मोतियों की बारिश वाला सीन तो आपको याद ही होगा, उसमें जो मोती थे ना वो असली थे श्रोताओं, और या फिर क्लासिक संगीत से सजे गीत हो या फिर शूटिंग के दौरान रास्ते पर पड़ने वाले सारे बिजली के खंबे जो है उनको हटवा देने की जिद हो, सभी में सिर्फ और सिर्फ के आसिफ की ही नजर आते हैं। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा श्रोताओं कि कोई एक फिल्म भले ही टीम वर्क हो लेकिन के आसिफ नहीं होते तो हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मुगले आजम को कोई दूसरा निर्देशक नहीं बना पाता। फिल्म जब रिलीज हुई थी ना दोस्तों तो भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार से भी फिल्म देखने लोग आते और तीन तीन दिन तक सिर्फ टिकट लेने लाइनों में ही लगे रहते। और के आसिफ इस फिल्म का सबसे बड़ा जो पक्ष था, मजबूत पक्ष था, वो इसके गाने थे। प्यार किया तो डरना क्या वाले गाने को देखा जाए तो उसमें लगभग कहते हैं कि 10 लाख का खर्च आया था उस जमाने में। लेकिन इस गाने की सबसे खास बात ये थी श्रोताओं कि इस गाने के साथ फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। मौजूदा दौर में जहां फिल्म के गीतों का उसकी कहानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, वहां के आसिफ का लगभग 10 लाख का ये जो गाना है ये एक मिसाल पेश करता है श्रोताओं।
1: श्रोताओं एक इस नूतन एक बात और इस गाने के लिए कही जाती है कि मुगले आजम का ये जो गाना है जिसकी तुमने अभी जिक्र किया, इसके लिए 105 गानों को रिजेक्ट किया गया था और उसके बाद ये यादगार गाने का निर्माण हुआ था। और इस फिल्म को बेहतरीन बनाना क्योंकि ये चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पहली बार भारतीय सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक जो थे उनका इस्तेमाल किया था। और इस फिल्म की शूटिंग के लिए के आसिफ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे कृष्णा मेनन साहब, उनसे इसकी बकायदा परमिशन ली थी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

श्रोताओं, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सतीश चंद्र दास गुप्ता की जयंती है, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। वे जिनका जितना सम्मान उनका रसायन विज्ञान का वो करते थे, उतना ही सम्मान बढ़ाई और लोहार के कामों का भी करते थे। उनकी सबसे बड़ी बात थी, हर काम का वे सम्मान करते थे। विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी एक सफल व्यक्ति थे, तो वो केवल इसी कारण।

शख्सियत, एक और नाम जिसे आप और हम कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, फिल्म काई पोछे से जिनका डेब्यू हुआ था, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। फिल्म काई पोछे से इन्हें डेब्यू किया गया था और यही वो वक्त जब अभिषेक बनर्जी की ये जो फिल्म थी वो बना रहे थे और फिल्म में ईशान भट्ट रोल के लिए उन्होंने अप्रोच किया था सुशांत को। इस फिल्म में सुशांत को राजकुमार राव और अमित साय के साथ देखा गया था श्रोताओं। इसके बाद सुशांत को पीके, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया और इन्हीं सभी फिल्मों में अपने रोल से उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है। और श्रोताओं, आज के दिन यानी कि 14 जून 2000 में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी इस कहते ना कि चकाचौंध वाली दुनिया से सभी को अलविदा कह दिया था।

0: जी श्रोताओं, तो नमस्कार का जो सफर है वो यहाँ लेगा विराम, क्योंकि वक्त हो चला है और समय जो है वो किसी को नहीं बख्शता। तो बिल्कुल दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को। मैं आपके साथ सीमा शर्मा
1: और न्यू न्यू नूतन सोनी।
0: दीजिए अनुमति
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें और गीत।

0: श्रोताओं, भेलपुरी खाई, नई पिक्चर दिखाई, खाना भी खिलाया होटल में और नई साड़ी भी दिलाई। जी हाँ, जीवन की भागदौड़ में ये कुछ ऐसे पल भी होने चाहिए जो दिल को सुकून दें, मन को छू जाएं और यादों की जो गलियां हैं उसमें हमें मुस्कुराने का अवसर दे दें। तो बिल्कुल आइए, ये जो एक घंटा है इसमें हम करेंगे दिल की बातें, रोचक जानकारी भी साथ में आपको देंगे और साथ ही साथ आनंद लेंगे सदाबहार और मधुर गीतों का। तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए संगीत और शब्दों के इस खूबसूरत सफर के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम बातें और गीत। और बातें और गीत कार्यक्रम में आपके साथ जो दो दोस्त आपके हैं उनमें मैं हूँ सीमा शर्मा और मेरे साथ
1: नूतन सोने।
0: और श्रोताओं, हमारी आवाजों को आप तक पहुंचाने के लिए अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं सत्येंद्र।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, फार लिंक रोड, जोधपुर।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
5: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
7: नूतन, अभी अभी हमने ये जो गीत सुने इनमें हमने देखा कि बहुत सारा खर्चा हो रहा था, है ना?
8: हाँ, बिल्कुल।
7: नई पिक्चर, खाना भी खिला दिया, नई साड़ी दिला दी, चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफी और न जाने कितने, मतलब चाहे उनकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन खाना है तो खाना है, लेना है तो लेना है, घूमना है तो घूमना है। जब इस तरह की बात हो जाती है तो फिर बाद में एक ही बात होती है, अरे यार बजट हिल गया। हाँ, और जो बजट हिल जाता है तो फिर सेविंग्स याद आती हैं।
8: बिल्कुल।
7: और जब सेविंग्स याद आती हैं तो वहां पे कुछ बड़े बड़े दो, जिसको हम कहते हैं ना बच्चों के मार्क्स आया करते थे जीरो, वो नजर आ जाता है। तो ये जो बचत होती है ना, ये बड़े काम की चीज होती है। लेकिन कई लोग इसे सोचते हैं, अरे आज मैं जियो, बचत का क्या करना है। लेकिन जीना तो कल भी है, हालांकि हाँ एवरी जो मोमेंट है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी क्या बचत जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए?
8: बिल्कुल, आज मैं जीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज जो हमने थोड़ा सा बचाया है ना, वो बड़ा ही कल काम आया है। और बचत की राह पर जो चला है ना, उसने हर संकट को हराया है।
7: तो मैं और तुम जो ये बचत की बात कर रहे हैं, हमारे श्रोता जो हैं, उन्होंने भी अपने जो सारे काम में से थोड़ा सा समय बचा करके ये जो प्रोग्राम सुनने की तैयारी कर ली है, वो भी समझ गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, बचत। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी जो ये बचत होती है, ये भविष्य में बड़ी पूंजी बन जाती है। अब सिर्फ बात पैसे की नहीं है इसमें, बचत बहुत तरीके से और बहुत तरहों से की जा सकती है, बहुत चीजों की जा सकती है, वो भी बचत का ही नाम देती है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है श्रोता, उसमें हम बताएंगे आपको बचत का महत्व, बचत के आसान तरीके और उनसे जुड़ी कुछ बातें भी सुनेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम बचत करेंगे गीत सुनवाने में, क्योंकि गीतों की तो भरमार है और जब गीत सुनते हैं तो बचत करने का जो पॉजिटिव थॉट है वो और भी प्रबल हो जाता है।

0: हमारी लाइफ चलती है और अलग अलग सिचुएशंस आती रहती है और सिचुएशंस पर ही हमारा जो जीवन है वो निर्भर करता है और कैसी परिस्थिति आ जाए इसका कोई हमको आइडिया नहीं होता है। तो उस परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए बचत जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है और बचत में चाहे हमारी शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो और कोई भी ट्रिप प्लान करनी हो, अच्छा आलीशान घर बनाना हो या कोई भी लग्जीरियस गाड़ी लेनी हो, सबके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? बस मन पैसा पैसा इकट्ठा होना चाहिए हमारे पास, तो हम उसको उस चीज को कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसीलिए बचत जो है श्रोताओं वो बहुत ही जरूरी है।
1: और बचत एक चीज की, ये सब नूतन जो तुमने बताया ना कि कौन सी परिस्थिति कब आ जाए उस सिचुएशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और श्रोताओं एक बात और कि जो पल है, जो समय है, उसकी बचत भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हमने समय को नहीं संभाला, समय को नहीं सहेजा, उसकी बचत करके उसे उपयोग में नहीं लिया, तो जो आने वाला पल है ना वो भी ऐसे ही चला जाएगा और फिर बस हम ये ही गीत गाते रह जाएंगे कि आने वाला पल जाने वाला है।

श्रोताओं 102.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातें और गीत। आप यही सोच रहे होंगे कि हर कोई बचत देने की बचत करने की सलाह तो देता रहता है, लेकिन आखिर करें कैसे? मतलब जितनी इनकम है उसमें से तो खर्चा पूरा हो जाता है, तो बचत कैसे?

0: करें। जी हां, ये जो एक गलत फहमी है कि बजट कम है और सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, इसके लिए कुछ हम आपको टिप्स बताते हैं कि कैसे आप बचत को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को आप 21 दिन दें, क्योंकि कोई भी हैबिट जो बनती है वो 21 दिन में बनती है। श्रोताओं, जब भी कुछ महंगा खरीदने का मन करे तो उसे तुरंत खरीदने के बजाय 21 दिन तक आप रुकें। तब तक आप उस चीज़ से थोड़ा सा डिटैच भी हो सकते हैं। अगर उस चीज़ की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आपको 21 दिन के बाद भी आपको ये लगेगा कि हाँ, इसकी वाकई ज़रूरत है, तभी खरीदें। अक्सर कुछ दिनों बाद वो चीज़ लेने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है और वो उतनी यूज़फुल भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली आदत है, उसे कंट्रोल करके भी सेविंग कर सकते हैं।
1: हाँ, और एक दूसरी बात, जब भी हम मार्केट जाते हैं ना तो बाजारवाद जो है ना वो आपको जो है हमारे पे हावी हो जाता है, और हम जो सामान देखते हैं अपने आसपास चलते चलते तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं है हम बस उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि है बस अच्छा लगा है ले लो, अच्छा लगा है ले लो। और ये भी होता है कि कभी काम आएगा ऐसा हम सोचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें दोस्तों। आप जो एक लिस्ट बनाने की आदत डाल लें शॉपिंग पर जब भी जाए ना, तो मतलब गैर ज़रूरी चीज़ों से अट्रैक्ट ना होकर आप अपने जेब में अपनी एक लिस्ट रखें और उसी के मुताबिक ही जो है अपनी चीज़ें खरीदें। और उस लिस्ट में क्या होगा श्रोताओं, अपने ही ज़रूरत की सामान की चीज़ें लिखी होगी, फिर बाज़ार में उसी को खरीदें जो लिस्ट में चीज आपने मेंशन की है। फालतू की चीजों से आप अट्रैक्ट ना हो, और इससे आप बिना सोचे समझे खरीदारी से बचेंगे और इससे आपके पैसे भी बचेंगे।
0: और नूतन, ये कई बार होता है जो लिस्ट बनाने की नहीं आदत होती है ना, तो जैसे ही मॉल में या किसी शॉपिंग स्टोर पे अपन घुसते हैं तो वहां पे जो मार्केटिंग स्किल्स अलग अलग प्रोडक्ट्स की अप्लाई की हुई होती है, उनको देखते ही जो चीज खरीदनी होती है वो तो रह जाती है और बेफिजूल की हम बहुत सारे स्टॉक को खरीद लेते हैं, जिससे कि जो खरीदने वाली चीज थी उसके लिए बजट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और जब ऐसी बात हो जाती है तो दिल बस यही गाता है कि भाई अब तुम हो तो हमारे जन्म जन्म के साथ ही, लेकिन करें क्या, अब तुम्हें खरीदने के पैसे हमारे पास बचे नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग करते हैं, अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना लेते हैं, तो उससे आपको दो चीज़ों की सहूलियत हो जाएगी, एक तो आपकी बचत हो जाएगी, साथ ही साथ जो काम की चीज़ है वो आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी और उसे आप लेना नहीं भूलेंगे। और फिर बस यही गाना आप गा लेंगे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
5: जी अशुतो, हम बात कर रहे हैं कि बचत कैसे सीखी जा सकती है, बचत कैसे करी जा सकती है। तो उसके लिए हम, क्योंकि देखिए जो भी सैलरी है या कोई भी रिसोर्स है, जहाँ से भी हमें पैसा मिलता है, चाहे बिजनेस है, हमें अपनी सैलरी या जो भी सोर्स है उसका एक हिस्सा शॉपिंग के लिए बजट हमें तय करना होगा। शॉपिंग के लिए कैश लेकर जाएं, क्योंकि जब पर्स खाली होने लगता है तो खर्च से डर भी लगता है। जनरली ऑनलाइन शॉपिंग जब अपन करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता है कि पैसे कब जा रहे हैं, लेकिन जब कैश देते हैं तो दिल थोड़ा सा दुखता तो है। जब दिल दुखता है, पर्स खाली होने की कगार पे आ जाता है, तो हाथ अपने आप रुक जाता है। जी हाँ, तो ये जो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट का जो डर नहीं हमें आ पाता है, उससे हमारा खर्च थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनसे आप अपने जो बजट है उसको बिल्कुल रिजिडिटी से वहीं तक रख सकते हैं जहां तक आपने सोचा है। एक चीज़ और होती है श्रोताओं, कि हम देखते हैं कि ट्रेंड जो है, जिस चीज़ का भी ट्रेंड चलता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ फैशन की तरफ चलते चले जाएं और बजट को बिल्कुल डामाडोल कर दें, तो ये भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों में आपको बनाना है एक बैलेंस, दोनों में बिठाना है सामंजस्य, और फैशन के साथ रहते रहते आपको पॉकेट फ्रेंडली भी होना है।

जी श्रोताओं, जो अभी तक हमने बचत की बात की तो जो आसान तरीके हैं, एक बार रिवाइज आप करें कि अपना मासिक बजट आप ज़रूर बनाएं और अनावश्यक खर्चे जो हैं उनसे बचें। खरीदारी से पहले आप लिस्ट ज़रूर बनाएं और साथ ही साथ आप अपनी जो भी इनकम है उसका 10-20% बचाने की कोशिश करें। अब ये तो बात हो गई पैसों की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप इनडायरेक्टली अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। जी हाँ, वो इनडायरेक्टली क्या है? आप घर में बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं, उससे आपका जब बिल कम आएगा तो वो भी इनडायरेक्ट सेविंग आपकी हो जाती है। जनरली हम देखते हैं कि बिजली जो बच्चे हैं घर में, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम के सारे जो स्विच हैं वो ऑन के ऑन रह जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों की भी ये आदत डालें कि बिजली को बचाएँ, पानी को बचाएँ। वैसे भी सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ हमारी पॉकेट के लिए भी अच्छी चीज़ है। और एक और बात आपसे कही थी कि ऑनलाइन जो पेमेंट है उसको भी आप रोक सकते हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन में जो धोखाधड़ी है उससे भी आप बचे। और ये जो छोटी छोटी बचत जो आप करेंगे ना, आप ये देखिएगा कि थोड़े समय बाद ये आपको कितना बड़ा प्रॉफिट देंगी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन, आप फिर से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 50 रुपये बचाता है, हर रोज़ के अगर आप 50 रुपये बचाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एक साल में आप कितने रुपए बचा लेंगे? जी हाँ, आप एक साल में लगभग 18,250 रुपये की बचत कर सकते हैं। तो जब अपने हाथ की बात है, 50 रुपये अगर आप, या कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो आपके लिए फिजिबल है, आप उसे डेली अपनी सेविंग के लिए एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आप एक अच्छी खासी रकम जो है बचा सकते हैं।

डियर लिसनर्स, अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं जिससे आप जरूर इंस्पायर होंगे बचत के लिए। होता क्या है कि किसान होता है और वो जो है हर एक दिन अपनी कमाई का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो अलग रखता है, यानी कि बचा के रखते हैं। वो जब ऐसा करता है तो पूरे गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और सालों बाद जब उसी गांव में सूखा पड़ता है तो बाकी सारे गांव वाले तो बड़े बेहाल से होते हैं, तब उस किसान की जो बचत है उसके परिवार

0: का सहारा बनती है श्रोताओं। तो ये छोटी सी जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि कमाई हमारी भले ही बड़ी हो छोटी हो, लेकिन हमारी बचत की जो आदत है वो सबसे बड़ी होती है और हमारे जीवन में मायने रखती है।
1: इसीलिए तो कहते हैं कि छोटी छोटी बचत देती है राहत।

0: नूतन, जो हम बचत की बात श्रोताओं के साथ शेयर कर रहे हैं, पहले तुम तो बताओ कि तुम कैसे बचत करोगी।
1: मैं तो क्या करूंगी, बस थोड़ा सा जो है बचा के अपने पर्स में रख लूंगी, और मे भी अगर ज्यादा होता है, वैसे होता नहीं है, होता है तो एक FD करवा लूंगी।
0: तो ये जो बिना सोचे समझे की बचत करते ना, उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। कुछ पर्स में रखने से कुछ बढ़ेगा तो नहीं, तो ऐसे में हम बहुत सारी सरकारी बचत योजनाएं जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डाकघर बचत खाता भी खोल सकते हैं, हम RD कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, PPF है, और भी बहुत सारी सरकार की बचत योजनाएं हैं जिसमें जो तुम पर्स में अलग से रख रही हो ना, उसको वहां पे डिपॉजिट कर सकती हो। उससे एक रेगुलरिटी भी रहेगी, साथ ही साथ उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तुम्हें मिलेगा, और जब इंटरेस्ट मिलता है तो फिर कहते हैं ना कि चार्म थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो कहावत भी है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, चाहे वो पोते की बात हो या फिर बढ़े हुए पैसे की बात हो। तो जब हर जगह सूद प्यारा है तो क्यों ना उस बचत को हम किसी ऐसी स्कीम में लगाएं, कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम में लगा दें जिसमें उसमें कुछ इजाफा भी हो जाए।
1: स्मार्ट सेविंग।
0: और एक और बात, सिर्फ बचत पैसों की नहीं, घरेलू बचत भी हम कर सकते हैं। जैसा लाइट और पानी का मैंने कहा था, उसमें घर में भोजन की बर्बादी ना करें, बाहर खाने की बजाय मतलब जनरली रोज रोज बाहर नहीं खाएं, कुछ डेज प्लान कर लें कि 15 डेज में एक दिन या महीने में एक बार,
1: हेल्थ की बचत हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ भी बचेगी और पॉकेट भी, थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली चीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जरूरत और इच्छा, इनमें अंतर हमें समझना चाहिए, क्योंकि जरूरत अगर है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा है तो उसे हम एज पर द सिचुएशन टैकल कर सकते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑफर्स निकलते हैं, तो जो सामान की जरूरत नहीं होती है लेकिन इच्छा ने हावी हो गई और हमने वो सामान खरीद लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, ऑफर देखा। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे बजट को हिलाती है, इसलिए हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी आने वाली जनरेशन है यानी कि बच्चे, उनको भी बचत की आदत सिखानी चाहिए।
1: वो तो उस चक्कर में भी पड़ जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जो है अनलिमिटेड फूड का जो ऑफर निकलता है ना, उसके पीछे भागे चले जाते हैं।
0: और अनलिमिटेड फूड और प्लस जो कहते हैं ना फैशन, जो ट्रेंड है और उसमें भी ब्रांड्स हैं, तो उनके लिए जो पैसे की बर्बादी है, मुझे ऐसा लगता है उसे हमें एक लिमिट में लेना चाहिए। हमें हर चीज को बैलेंसिंग फॉर्म में लेना चाहिए, जिससे जिंदगी की राह भी आसान होती है। और जब जिंदगी की राह आसान होती है तो बस जुबां पे मीठे मीठे गीत आ ही जाते हैं।

0: जी श्रोताओं, जो आज बचत करता है वही कल निश्चिंत रहता है।
1: बिल्कुल, और पैसा कमाना भी एक आर्ट है, कला है, लेकिन उसे बचाना उससे भी बड़ी कला है दोस्तों।
0: तो इन बातों के साथ दीजिए अनुमति आपके दो दोस्त, मैं सीमा शर्मा
1: और नूतन सोनी,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें और गीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनवार।

हे श्रोता मन भावना, हे हिवडेरा हार, मीठे गीता सू करा थारी मैं मनवार। मनवार कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालु श्रोताओं रो घने मान स्वागत अभिनंदन। गीत संगीत और रीत प्रीत रो रथ लेयर हाजिर हूँ आप रो शब्द सारथी सत्येंद्र चारण। स्वीकार कराओ महारा राम राम।

सदड़ा मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिन माई आपने सुनन न मिले मायड़ भाषा री मठोट और मिजाज। मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिन माय में आप ताई पूगती करा लोक रंगरी बानगी और एक सु सवाया एक लोक गीत। तो रेडियो री फ्रिक्वेंसी सेट कर ले रहो 102.1 FM माथे और जुड़िया रहो FM सन सिटी सु। मनवार कार्यक्रम रो पहलो गीत आपरी नजर।

लाग्यो लाग्यो जेठ असाढ़ कंवर तेजा रे लगतोड़ो आयो सावण भादवो। सांची बात है जेठ लाग तो गयो पण उतरन रो नाम ही नहीं लेवे क्योंकि अब के जेठ जका है वे दो है। सही सुनियो आप, अब के जेठ दो इन कारण है कि अब के जको है वो ईदक मासो है। साथीना जेठ रे महीने अब के गर्मी तो जोर री पड़ी है और हाँ पारा बडेरा जका हा वे कहता हा के जेठ जितो तपे नी उतो ही सावण और भादुओ जको है वो बरस्या करे। बडेरा एक कावत कहता हा जकी घनी चावी है आप सुनो के जेठ जाय तपन तो कुण रोके सावण भादवो बरसंतो। जेठ सु जुड़ी एक भले कावत है के जेठ बायो बाजरो सावण घाल्या बूट भर भादुड़े भर देसी वो बाजरे रो ऊंट। के जेठ मैं जे बाजरी बाई दीनी और सातो वो बाजरी सावण में बूंटा घाल लेवेला और भादवेर में बरसात होया पछे जकी है भली ऊंट रा गाडा भर लो एड़ो धान निपजेला। कहवे के जेठ मास जेठ तपे निराशा तो जानो बिरखारी आशा। मतलब जेठ महीने में जे तपती हुए तो समझ लेनो बिरखा बे नेड़ीज है। एक है के जेठ मास जे रवि तपे बाजे ऊनी बाय डंक कहे सुन भड्डली पहुमी नीर नमाए।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
4: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
5: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

सतड़ा अंतराल सु पहला आप सुनेहा गीत के नैन कटारी मत मारो मारा बादिला लागे कड़े जमाए। सतड़ा नैना कने तो इतो सामर्थ हुए के बे खामोश होता था कहीं बो से की कह जाया करे जिका होट और गड़ो है वे नहीं कह सके। जद आपारा नैन सामेलारा नैन सु मिले तो बे एक दूजे ने देख कर उनरा भाव जका है समझ जाया करे। पचे सामेलो भलाई कोई मिनक कोई भी हुआ चाहे वो भले आपारा माँ बाप हुए भाई बहन हुए या कोई दोस्त प्रेमी प्रेमिका या जीव जिनावरी क्यों नहीं हुए आंख्या आंख्या ने पढ़ लिया करे। कई बार एड़ो या करे के आंपा जका है आंपारा कोई एड़ो मित्र हुए जिनसु आंपारे बंतर नहीं हुए आंपारे उनसु बोलचाल बंद हुए पर लोका लाज ही आंपाने उन भाई सु उन मित्र सु हाथ मिलानो पड़ जावे पर आंख्या आंख्या रमाए आंपारे उन सारू वे भाव नहीं हुए जका एक दोस्त रे बीच

करे। जने कावत या आप दोह कह सको एक प्रसिद्ध है के की होवे आगे किया हेत विहूणा हत, के भाई खाली हाथ बढ़ाए हूं आगे कहीं हुए, यदि हेत है नहीं तो बे हाथ आगे बढ़ाना व्यर्थ है। की होवे आगे किया हेत विहूणा हत, नैन सलूणा ना मिले तो बाल अलूणी बथ, कि यदि आंखें इज नहीं मिल रही है जने अलूणी बाताओं कोई सार नहीं है।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ।
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: FM Sun City, FM Sun City,
7: FM Sun City, Sun City.

सदना आकाशवाणी जोधपुर एफएम सनसिटी चैनल माथे आप सुन रहे हो कार्यक्रम मनवार और मैं हूं आपरे साथे आपरो शब्द सारथी सत्येंद्र चारण। अंतराल सु पहला अबार आप गीत सुने हा के गीत छिड़क लिया गावे रे, गीत छिड़क लिया गावे, वन में नाचे मोरियो ढोल बाजावे रे, गीत छिड़क लिया गावे रे। सदना आपारा बडेरा इत्ता ज्ञानी और आगम भागी हा, आगम भागी मतलब आगे रो देख सकता हा के बे जीव जिनावरारी हलचल और बोली सु भी सुगन करता हा, उनारो अंदाजो एकदम खरो खरो उतरतो हो। बडेरा कहता के पपीहो पीहू पीहू करे, मोरा घणी अजग, छत्र करे मोरियो सिरे, तो नदियां बहे अथग। के पपियो जको है वो प्यू प्यू करे और मोरिया जका है घना बोलन लाग जावे और छतर कर नाचन लाग जावे, तो समझ लेनो के बरसात एडी वेला के नदियां पानी उ लबा लब उजावेला। बडेरा कहता के टिंटूड़ी के इंडो एक, कहे फोगसी काल विशेक। के टिंटूड़ी यदि खेत में धान कटी एक इंडो दिखे तो समझ जाइजो के एक काल रा सुगन है। दो इंडा टिंटूड़ी धरे निश्चय आधो काल पड़े। कि यदि इंडा टिंटोड़ी जका है वे दो है तो थे समझ लीजो के काल जको है वो आधो पड़ेला। जे हुजावे इंडा तीन तो रोग दोष से परजा छीन। कि यदि तीन इंडा थाने कटी खेत में टिंटोड़ी रा दिखे तो ए सुगन है के जनता रमाइने आम जन रमाइने रोग फैलेला। और जे मिल जावे इंडा चार नवखंड निपजे धान अपार। बडेरा कहता के जे खेत में थाने टिंटोड़ी रा चार इंडा दिख जावे तो समझ लीजो के चारा खानी नव कूट रमाए धान ही धान वेला, मतलब जमानो जो को है जोरदार वेला। पपैयेरा टिंटोड़िया

सुगंध तो सुन लिया, अबे आप सुनो चिड़कलियारा सुगंध। बडेरा कहवता के चिड़िया झीले रेत मा कांसी करेज काट, एहरू जाये रूखा चढ़े दही जड़े माट। के चिड़कलियां जकी है वे रेत माई स्नान करे, कांसीरा बर्तनार माई काट आवन लाग जावे, सांप जका है वे रूखा मत चढ़न लाग जावे और दही रे माथू माखन जको है वो गलन लाग जावे, तो ये बरसात रा सुगंध मानी जाए। बडेरा कहवता के चिड़िया जे माड़ो करे कोठा कमरा माय, बिरखा आया आगमच तो चारू मास बन राय। के चिड़कलियां जकी है वे खुदरा आड़ा जका है, बारे रूखा माते नी बना रखे कोठा रे माय कमरा रे माय आर बनावन लाग जावे रोशनदाना रे माय, और वे जकी है घर में बैठन लाग जावे, तो समझ जावनो के चोखी बरसात रा सुगन है।

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: गोचर तारा मंडल दिस कौन घड़ी पवन एडी सैकड़ों चीजा जकी है वन वे आंगले माथे याद रखता हा। बिरखारी जकी बरसातरी जकी भविष्यवाणी आपार बढ़ेरा करता हा बे सुगनारे सामू एकदम डोरा डोर खरी उतरती ही। सुगनारी जे बात करा तो आपार अठे डंक और भडली रा लिखोड़ा जका दोहा है पडूतरी दोहा वे घना चावा है। डंक और भडली बाबत आ धारणा है कि डंक जको हो वो महर्षि धन्वंतरी रो बेटो हो। धन्वंतरी ऋषि महाविद्वान औषधि शास्त्र रा जानकार आगम भाखी अर जीव जिनावर री बोली पहचान लेवता हा। अर कुदरतरी जकी हलचल होती है उनराई धन्वंतरी ऋषि जका है वे मोटा जानकार हा। जने एडा ऋषि रो जको बेटो डंक हो वो पछे कम कठम होवतो। कावत है नी के रूंक वे जड़ाई छोड़ा होया करे। डंक जको हो वो खुद मोटो कवि हो और आगम भाकी हो वो आगेरी जकी है भविष्यवाणियां करतो और प्रकृति चित्र जका है वे प्रकृति ने देख देख कर जको है खुद आकलन करतो और भविष्यवाणियां करतो कि इन साल केड़ो जमानो वेला इन साल केड़ी बिरखा वेला। और भडली जकी ही वा एक आदिवासी कन्या ही कहवे की एक बार भडली महर्षि जका धन्वंतरी हा उनारे जकी वा कुटिया है उन कुटिया में जार बटे भोजन कर लेवे धन्वंतरी ऋषि रे झूठो छोड़ियोड़ो उन सु वा बडली जकी है उन रही ज्ञान रा जका कपाट वे वे खुल जावे और वा भी मोटी विदुषी बन जावे। एक बार कहवे के डंक और बडली रमाए शास्त्रार्थ वे जिन रमाए बडली जकी है वा उन डंक ने हराए देवे और उन सु प्रभावित हुर डंक जको है वो बडली सु ब्याह कर लेवे।
1: अरे आज धर

किरड़ो जा कांठे चढ़ियो एवड़ ऊंधो वाव डंक कहे सुन भड़ड़ी मेह पोहरा में आव। दीवा बीती पंचमी सोम सुकर गुरु मूल डंक कहे सुन भड़ड़ी निपजे सातू तूल। घड़ी दोय बिन पाछले बादल धनुष धरे ह डंक कहे है भड़ड़ी जल थल एक करे हा।

और साथीड़ा अबे चालता चालता की लोकरी प्रसिद्ध कहवता आपरी निजर। एक कहावत है के अण मांग्या मोती मिले, मांग्या मिले न भीख। यदि आप मांगने जाओला तो थाने कोई भीख नहीं देवेला, और किस्मत में लिखोड़ा है तो बिना मांग्या ही मोती मिल जावेला। एक कहावत है के अभाग्यो टाबर तिवार ने रूसे, मतलब सही समय माते सही समय रो फायदो नहीं उठा सके, जना कहावत कया करे। एक बड़े कहबत है के ऊंखड़ी में माथो दे जिको धमकासू के डरे। जद कठिन काम चुनी लियो करण रो तो पछे अब कठिनाइयों डरन री कोई आवश्यकता ही कोनी। एक कहावत है के कमेडी बाज ने कोनी जीते। एक कहावत है के कानती भेड़ को ग्वाड़ो ही न्यारो। कोई निकृष्ट आदमी हुए जके ने जका प्रतिष्ठित लोग है उनारे बीच में जद ठोड़ नहीं मिले तो वे खुद रो एक न्यारो इस गुट बना लिया करे, जना कहवे के कानती भेड़ को ग्वाड़ो ही न्यारो। एक कहावत है के गादड़ेरी मारियोड़ी शिकार ने नार कोनी खाया करे। मतलब इनरो अर्थ है के जको खुद आदमी सक्षम है, जको स्वयं में निर्भर राखे वो दूजा माते भरोसा नहीं राख्या करे, वो खुदरो काम खुद ही करर खाया करे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनवार। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे हैं। अब समाचार दिल्ली से।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

0: है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लग।

0: जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिक किया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: पार्टी वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

शेवन रिजवी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने, महेंद्र कपूर आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी दिल और मोहब्बत।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना दी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा, वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो, तेरा हुस्न रहे आबाद। हाँ, एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ, तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है।

0: ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा, चले जाना, जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने

इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे खरीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

0: माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोता कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर देखती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोता, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या प्रदर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि वापस मिलेगा।
1: खुश मिजाज इस वाटिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपसे बहुत सी बातें होंगी पर पहले ये बात सुने। एक पिता अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर पर निकला, अचानक बेटा गिर गया, चोट लगने से उसके मुंह से निकला आह। तुरंत पहाड़ों में से कहीं से आवाज आई, आह। बेटा अचरज में रह गया, उसने फौरन पूछा, तुम कौन हो? सामने से वही सवाल आया, तुम कौन हो? अपनी बात की नकल करते देखकर बेटा गुस्से से चिल्लाया, डरपोक। जवाब मिला, डरपोक। उसने पिता की ओर देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जरा ध्यान दो। इसके बाद पिता चिल्लाया, तुम चैंपियन हो। जवाब मिला, तुम चैंपियन हो। बेटे को थोड़ी सी हैरानी हुई लेकिन कुछ समझ नहीं सका। इस पर पिता ने उसे समझाया कि लोग इसे गूंज यानी इको कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी जिंदगी है। यह आपको हर चीज वापस लौटाती है। जो आप कहते हैं या करते हैं, आपकी जिंदगी हमारे कामों का ही प्रतिबिंब है। और अगर हम दुनिया में ज्यादा प्यार पाना चाहते हैं, अपने दिल में ज्यादा प्यार सभी से चाहते हैं, तो पहले अपने दिल में पैदा करें। हर वो व्यक्ति जो आपके आसपास है, जो आपसे जुड़ा है, हर वो प्राणी, हर वो परिंदा, प्रकृति, क्योंकि आप जो देंगे वही उससे पाएंगे। और ये जो संबंध है जिंदगी के हर पहलू में, हर चीज में नजर आएगा। फिर देखिए आपका नजरिया ही बदला बदला नजर आएगा।

0: जी हाँ, दूसरों के लिए जीने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। सखियों, आज है विश्व रक्तदाता दिवस और मेरे ठीक सामने बैठे हैं सेवा के मिसाल और युवाओं को प्रेरणा देने वाले रजत गौड़ जी। रजत जी लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी मानव सेवा, समर्पण, संवेदना से लाखों युवाओं को रक्तदान, शिक्षा और सेवा के लिए प्रेरित किया है। रजत जी, आकाशवाणी के नारी वाटिका कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम आपका।
0: तो रजत जी, आज है विश्व रक्तदाता दिवस, आप स्वयं रक्तदान करते हैं और क्या महत्व रखता है ये दिन आपके लिए?
1: वैसे रक्तदाताओं के लिए और रक्तदान पे काम करने के व्यक्ति के लिए मैं सोचूं तो आज हमारी एक दीपावली का जैसा एक त्यौहार है, जिस एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों को प्रेरित करते हैं। वैसे तो 12 मास ही रक्तदान में हमेशा प्रेरित करने का काम है, 24 घंटे x 7 हमारी सेवा रहती है। परंतु जैसे कि आज माने तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आज रक्तदाताओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें और रक्तदान के प्रति लोगों को जोड़ें।
0: जी। अच्छा, ये आपने शुरुआत कैसे की? आपका जो एनजीओ है लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान, वो आरंभ कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई?
1: जी मैम, ये विषय मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण विषय है। शुरुआत आज से लगभग 11 साल पहले, मेरे एक मित्र था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके भाई का। वो दिन एक ऐसा था कि दीपावली का सेम डे था, और ये जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, और मेरे साथ जुड़े जितनी संस्था में हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और वो उनसे सब जानते हैं। तो दीपावली के सेम डे था, शाम की टाइम थी, जो लोग अपने घरों के अंदर दीपक रोशन कर रहे थे, कोई फटाके फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तभी मेरे एक मित्र का कॉल आता है कि मेरे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड की आवश्यकता है। वो एक समय ऐसा था, हमने ब्लड की आवश्यकता है हमारे को इतना ठीक है, किताबों में पढ़ते थे ब्लड चढ़ाया जाता है, वो इतने तक ही सीमित थे, परंतु लाइव हमने कभी ब्लड देखा नहीं और चढ़ाते हुए भी नहीं देखा।
0: देखा नहीं।
1: तो वो एक बड़ा ही चिंताजनक विषय था, परंतु ईश्वर ने हमारी इतनी मदद की, उस रात में हमने हमारे मित्र के भाई को ब्लड डोनेशन करवा के उसकी ज़िंदगी बच गई। उस दिन से ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी में एक अध्याय चालू हुआ, वो आज दिन तक बरकरार चलता आ रहा है।
0: नहीं, अब ऐसे तो कई घटनाएं होती हैं कि आप करते भी हैं, लेकिन एक संस्था बनाने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया?
1: हाँ, वैसे सोचे तो जब उन्होंने हमने उस व्यक्ति हमारे भाई को ब्लड दिलवाया, और जब डॉक्टर ने हमारे को एक शब्द बोला कि यदि इसको समय पर ब्लड नहीं मिलता तो हम ये सर्जरी नहीं कर पाते और क्या पता क्या होता, तो हम वैसे ही एक चाय की थड़ी पे 5-7 हमारे कॉलेज मित्र बैठे थे। मेरे एक मित्र रवि जी तिवाड़ी है, सोहन पटेल जी है, सुनील है, अमित है, हम 4-5 यंग युवा लड़के थे और चाय की थड़ी पे बैठते थे, दूसरी चीज़ों से उस टाइम की घर पारिवारिक हमारे जो अनुशासन के गुण थे वो अच्छे थे, तो हम एक चाय जरूर पीते थे। तो उस चाय पे बैठे थे तो हमने ये सोचा कि उस रात को हमारे को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो अपन क्या करते हैं, कैंप करवाते हैं ब्लड डोनेशन। तो हमने सबसे पहले 11 साल पहले एक पाउटा सैटेलाइट अस्पताल था उस टाइम ही, उसमें एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया।
0: जी
1: ब्लड डोनेशन कैंप करवाया तो उस टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक का इतना वो प्रचलन नहीं था 12
0: नहीं
1: साल
0: था।
1: पहले। तो हमने A4 साइज के पन्ने छपवाए, थंबों पे, गलियों में, हमारे इर्द गिर्द जितनी हमारी पहचान थी हमने वो वितरण किए, और ऐसे जाके घर घर बोला भाई आपको ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। तो काफी घर वाले हमारे पीछे पड़े, कोई खून कोई निकाला जाता है क्या? तो भी हमने उस टाइम वो संघर्षी दौर था वो कैंप करवाया और 57 यूनिट हमने ब्लड कलेक्शन किया। दूसरे दिन न्यूज़पेपरों में संचार के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने हमारा कहा अरे बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, तो बहुत

0: फिर लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी कि अरे उस दिन आपने कैंप करवाया ना, हमारे को ब्लड दिलाओ, कार्ड दो। तो फिर हमने सोचा कि हम कंटिन्यू, फिर वो एक ऐसी ललक लग गई, तो हमने इस संस्थान का नाम ही उस दिन से ब्लड पे ही रखा, लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान। व्यक्ति के शरीर के अंदर इस लाल बूंद से जीवन चल रहा है, तो उस संस्थान का नाम भी हमने लाल बूंद जिंदगी रख के उस संस्थान की शुरुआत की थी।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जैसे युवा समाज को जागृत कर रहे हैं और इतनी अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे भारत का भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है।
0: जी जी
1: अच्छा,
0: जी
1: ये आपने जो कही, आपने संस्था बना ली इस तरह से, तो कितने, क्या अब आगे इसकी इसकी प्रोग्रेस कैसी है? कितने शिविर लगा चुके हैं आप?
0: अब वैसे सोचें तो प्रोग्रेस तो हमने जब शुरुआत की थी उससे आज दिन तक 11 साल में हमने, हमारी संस्थान ने काफ़ी कुछ कमाने का मतलब है, हजारों अनगिनत जिंदगियां बचाई हमारे रक्तदाताओं ने। आज संस्थान के अंदर जितने भी रक्तदाता जुड़े हैं, हजारों रक्तदाता जुड़े हैं, चाहे मैं उनको जानता हूँ नहीं जानता हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वो सब लोग संस्थान को जरूर जानते हैं। और यदि किसी हॉस्पिटल में अभी रात को 12 बजे कॉल आ जाए मथुरा दास माथुर अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति का, जान हो पहचान हो कोई मतलब नहीं है, परंतु हमारा जो रक्तदाता जाता है वो कम समय के अंदर ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करके उसको खून अवेलेबल करवाएगा और चाय कॉफी अपने पैसे की पिएगी। इस सोच के साथ हम बिल्कुल प्योरली सोशल सेवा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने
1: मतलब
0: कंटिन्यू,
1: वो जो आप चाय कॉफी उस समय तंदुरुस्ती के लिए जो दी जाती है, वो भी आप अपने
0: हाँ
1: पैसों
0: वो भी
1: से?
0: हमारा डोनर कोई भी जाएगा वो अटेंडर से, मरीज के परिवार वालों से कुछ पानी भी नहीं पिएगा, वो
1: नहीं
0: अपनी जेब
1: लेगा।
0: के पैसे से चाय पानी पिएगा। और उसी क्षेत्र में संस्थान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई और हमारे पास आंकड़े ऐड होते रहे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हम रक्तदान करेंगे तो हमें मिथक है बहुत सारे कि हम कमजोर हो जाएंगे और ऐसा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उस समय आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, आप उनको कैसे संभालते हैं, उनके उस जिज्ञासा को आप कैसे शांत करते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे को काफ़ी देखने को मिलता भी है। हमारा टारगेट रहता है फर्स्ट डोनर, जिस व्यक्ति ने प्रथम बार रक्तदान कर दिया वो सेकेंड बार ऑटोमेटिक आके करेगा। तो हम काफ़ी बार, हमारे को देखने को मिलता है परिवार के लिए ब्लड चाहिए, फैमिली में ब्लड चाहिए, वो फैमिली का बंदा भी मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा, मेरी कमजोरी आ जाएगी, मैं ब्लड दूं तो मेरी कमजोरी आ जाएगी। तो वो कभी काफ़ी बार शिक्षा का अभाव रहता है या उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो हम उसको अच्छे से मोटिवेट करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य प्रेजेंट टाइम यही चल रहा है कि रक्तदाताओं को मोटिवेट करके रक्तदान करवाना। जिस व्यक्ति ने एक बार रक्तदान कर दिया, सेकेंड बार वो किसी भी परिचित के अपरिचित के सुन लेगा, वो ब्लड डोनेशन करके आएगा। तो हम ये कहते हैं कि यदि एक उदाहरण दे कि समुद्र होता है, समुद्र में यदि एक लोटा पानी का भर लिया जाए तो समुद्र के कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
1: नहीं पड़ता।
0: वैसे ही नेचुरल बॉडी के अंदर यदि जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, तो वो व्यक्ति यदि 1 यूनिट ब्लड देता है तो उसके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति ब्लड देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ही दिनों के भीतर उसका ब्लड वापस नया बन जाएगा। और उसके मैं, हमारी एक कहना है कि ब्लड देने वाले को ज्यादा फायदा है।
1: देने वाले को ज्यादा फायदा है, तो ये मिथक जो है उनको आप हटाते हैं, समझाते हैं। तो वास्तव में कौन इसके लिए है, किससे दे, कौन दे सकता है, स्वस्थ होने का आपके परिभाषा क्या है?
0: यदि अपन मेडिकली परिभाषा देखें चिकित्सा पद्धति से, तो एक 18 साल से लगाकर एक 60 साल वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है।
1: जी।
0: उसके बाद में जिस व्यक्ति को कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं हो, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो, किसी को कोई टैबलेट नहीं चलती हो, और जिसका वजन 60 किलो से ऊपर हो, 50 किलो से ऊपर भी हो, तो वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है। अब उसमें यही है कि ज़्यादा कोई नशा करने वाला या इस टाइप से कोई बड़ी लंबी बीमारी है उसका हम ब्लड नहीं लेते हैं। बाकी 18
1: तो
0: साल
1: वो
0: से
1: आप पहले चेक करते
0: वो
1: हैं?
0: हमारा एक फॉर्म भरते हैं ब्लड बैंक में, तो डॉक्टर फॉर्म भरता है, उस टाइम एक काउंसलर भी रहता है साथ में, और हम भी पहले उसकी काउंसलिंग कर लेते हैं कि भाई आप कोई गोली लेते हो या नहीं लेते हो, आपकी कोई पुरानी बीमारी है या बीमारी का, आपका कोई ऑपरेट हो रखा है या नहीं, आप कोई नशा करते हो या नहीं करते हो, इस टाइप से ये सभी पैरामीटर यदि किसी के अंदर कोई कमी नहीं है वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है।
1: दे
0: और युवा
1: सकते।
0: में तो मैं नहीं सोचता कि युवा ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त होगा, युवा बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकता, बस युवा आज के समय में थोड़ा मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि युवा यदि ब्लड नहीं दे सकते हैं तो नशे की वजह से यदि थोड़ा कमी आ सकती है, बाकी युवा स्वस्थ व्यक्ति होता है, अच्छा खान पान है, और मारवाड़ में तो विशेष तौर से घर का खान पान है, तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति आराम से ब्लड दे सकता है।
1: अच्छा, और स्त्री पुरुष में क्या भेद?
0: हाँ स्त्री पुरुष में यदि सोचे तो पहले महिलाओं का ब्लड डोनेशन थोड़ी मात्रा कम थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में देखें तो महिला बराबर रक्तदान कर रही है, महिलाओं का पैराग्राफ रक्तदान में बराबर है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिखने को मिलता था, ग्रामीण क्षेत्र की

0: महिला भी, यदि अपन सोचें कि नहीं ग्रामीण के अंदर सोच नहीं है या उनके अंदर शिक्षा नहीं है, परंतु तो मैं ये सोच रहा हूँ ग्रामीणों में भी हम ग्रामीण क्षेत्र में कैंप कर दें, गांव की महिलाएं बढ़िया तैयार होकर आती है, सज धज के आती है और वो ब्लड डोनेशन करती है। तो महिलाओं में ये सोचें क्योंकि उनके थोड़ा वो मानसिक चक्र का महावारी का रहता है, तो उस दरमियान हम ब्लड नहीं लेते हैं, और महिला का ब्लड लेने से पहले हम हीमोग्लोबिन जरूर चेक करते हैं।
1: चेक
0: जिस
1: करते
0: महिला का
1: हैं।
0: हीमोग्लोबिन 12 या 13 से ऊपर है हीमोग्लोबिन, तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: हमारे इस प्रोग्राम में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है,
0: जी
1: तो कोई आपका पसंदीदा गीत सुनाए।
0: हाँ, मेरे पसंदीदा गीत एक फिल्म है दूर का राई,
1: हाँ,
0: जीवन से ना हार बंदे।
1: बहुत सुंदर गीत है।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जीवन सेना हार तू मतवाले। रक्तवीर रजत जी बिल्कुल भी नहीं हारते और इसीलिए इतना महान कार्य कर रहे हैं, है ना रजत जी?
6: जी।
5: बता दूं सक्यों कि लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष रजत जी से हम बात कर रहे हैं। और अब अगला प्रश्न मैं इनसे पूछती हूं कि आप जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, है ना, उनके लिए आपकी संस्था लगातार काम कर रही है, तो वो किस तरह से उन्हें सहायता दे रही है?
6: जी मैम, यदि थैलेसीमिया शब्द आता है तो थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं जोधपुर का देखें तो लगभग जोधपुर में 400 से 500 बच्चे होंगे, और अपनी उम्मीद अस्पताल, गांधी अस्पताल, एक और ब्लड बैंक है, ये मिलके इन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को, एक बच्चे को महीने में 3 यूनिट ब्लड लगता है कम से कम, हर 10 दिन में। माने तो जैसे कोविड बीमारी आई थी तो कोविड में पूरा भारत है वो घरों के अंदर पैक हो गया।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: पत्ता भी इधर से इधर नहीं हिलता था, परंतु उस दौरान भी ब्लड की खपत वो की होती,
5: क्योंकि वो बच्चे थे
6: तो उन बच्चों को तो ब्लड अवेलेबल करवाना ही था। तो हमारे इतने इस 11-12 साल की जनवरी में सबसे विकट समय वो था कोविड का। हमारे को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड अवेलेबल करवाना जरूरी था, तो हमारी टीम उस टाइम रात दिन लगी हुई थी। जब लोग, यदि किसी की कॉनी किसी टेबल के टच हो जाती तो भी उसके दिमाग में ये भ्रम था कहीं मेरे को कोविड नहीं हो जाए। उस दरमियान लोग ब्लड बैंकों में आकर, अपने घरों के पास पार्क में मेडिकल टीम बुलाकर, ब्लड बैंक टीम बुलाकर ब्लड प्रोवाइड करवाते थे और ब्लड डोनेशन से उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज करवाते थे। परंतु इसके साथ मैं आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से आम जनता में और आज के युवाओं में एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारा एक अभियान साथ में चलता है कि शादी की कुंडली मिलान के साथ साथ रक्त की कुंडली की मिलान भी करना चाहिए।
5: बिल्कुल सही। बिल्कुल
6: उसका
5: सही।
6: कारण है कि यदि थैलेसीमिया पीड़ित आज जो जीन होती है उसकी एक टेस्ट होता है, हमारे एम्स में फ्री टेस्ट होता है, तो युवाओं को वो टेस्ट करवाना चाहिए कि अपने से उत्पन्न संतान थैलेसीमिया पीड़ित नहीं हो। इसका बचाव सबसे ज्यादा करेंगे, जागरूक रहेंगे, यदि अपनी ब्लड की जांच करवाएंगे तो निश्चित ही थैलेसीमिया पीड़ित उत्पन्न बच्चे कम पैदा होंगे।
5: बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने। अच्छा, डेंगू जैसी बीमारी, उसमें भी प्लेटलेट्स घट जाते हैं
6: जी,
5: तो इसमें भी आपका जो ब्लड बैंक है वो काम आता है।
6: बिल्कुल, प्लेटलेट्स की बात करें मैम, प्लेटलेट्स ब्लड से थोड़ा अलग प्रोसेस हो गया। एक व्यक्ति का ब्लड यदि डोनेशन करवाएं तो 4 से 5 मिनट लगता है, प्रोसेसिंग सहित गिने तो 10 मिनट में व्यक्ति फ्री हो सकता है ब्लड डोनेशन करके। प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि धड़ाधड़ व्यक्तियों की, ब्लड डोनरों की जरूरत होती है। प्रेजेंट टाइम ब्लड तो हमारे पास स्टॉक पड़ा है ब्लड बैंकों में
5: जी।
6: आज की तारीख में यदि जोधपुर का देखें तो हम सब ब्लड बैंकों के पास, हमारे पास 1200 यूनिट ब्लड पड़ा है, तो इमरजेंसी में ब्लड चाहिएगा और ब्लड हम दे देंगे। प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर एक सीजन चलती है तो उसके व्यक्ति को 2 से 3 यूनिट प्लेटलेट्स चली जाती है, क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स 20,000 से यदि डाउन आने लगेगी, 10,000 से डाउन आने लगेगी तो वो व्यक्ति खतरे के अंदर चला जाएगा, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जान पे आ जाएगी। हमारे संस्थान का, हम ब्लड डोनेशन करते थे उसके साथ, जैसे ही हमारे पास ये परिस्थिति आई डेंगू की तो हमने एक टीम बना दी डेंगू की स्पेशल। हमारे जो डेंगू सीजन के अंदर जो प्लेटलेट्स डोनर है उनके साथ हम स्वैच्छिक रक्तदान नहीं

0: उन व्यक्तियों को 300 से 400 डोनर को हम अलग रखते हैं, जैसे ही एचडीपी की रिक्वायरमेंट आई वो जाते हैं। कारण है कि एचडीपी देने वाला बंदा पूरा परिपक्व होना चाहिए, उसकी हाथ की दोनों नसें चेक की जाती है और वो एक घंटे का प्रोसेस होता है। पहले उस व्यक्ति की खुद की पूरी बॉडी की टेस्ट, क्योंकि वो लाइव जैसे ही निकाला और लाइव उस अगले
1: चढ़ाना है
0: तो एक घंटे तक मशीन के ऊपर सोया हुआ रहता है। उसका मतलब वैसे अपन मारवाड़ी भाषा में सोचे तो जैसे बिलावना करते हैं और मक्खन को अलग अलग करते हैं, वैसे ही एक ब्लड का वो है प्रोसेस,
1: वो निकलते जा
0: तो वो प्लेटलेट सेल्स निकलती रहती है। तो एक घंटे का प्रोसेस है, ब्लड निकलेगा, मशीन में जाएगा, प्लेटलेट्स अलग होगी और वापस ब्लड चढ़ेगा। तो वो व्यक्ति, आज तो बहुत जागरूकता आ गई, पहले तो वो प्रोसेस देख के ही काफी लोग
1: घबरा जाते थे,
0: परंतु आज के समय में इसका बहुत अच्छा नवाचार है। कारण है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लेटलेट्स की आवश्यकता 20,000 होती है बॉडी के लिए, और अभी आप हमारा टेस्ट करवाएंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख सेल्स रहेगी। बाकी की सेल्स जन्मती रहती है, मरती रहती है, बाकी की हम सो कहते हैं कि भाई ये गिफ्टेबल है, आप डोनेशन करो। तो काफी बार तो हमारे डोनर ऐसे हैं कि 72 घंटे के अंदर रिटर्न डोनेशन कर देते हैं,
1: वापस आ जाते हैं,
0: क्योंकि वो बन जाती है 50 घंटे में प्लेटलेट्स वापस डेवलप हो जाते हैं।
1: अच्छा, अभी रोकूंगी मैं आपको, जो जो ये काम करते हैं जो युवा बच्चे आपके साथ
0: जी,
1: उन्हें कुछ और फायदा होता है?
0: अब वैसे सोचें तो पर्सनली उनको फायदा मानव धर्म के नाते तो काफी कुछ मिलता है।
1: नहीं, सपोज उनके परिवार में कहीं कोई दुर्घटना हुई और उन्हें जरूरत पड़ी।
0: जी बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता रहती है, वैसे तो हमारी प्राथमिकता हर उस व्यक्ति के साथ है, परंतु वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो हमारा ब्लड डोनेशन करता है, उस व्यक्ति के लिए हम उसके पारिवारिक हेल्थ इशू हो, चाहे उसके परिवार में ब्लड चाहिए होता है, तो उसके लिए हमेशा रात और दिन तैयार रहते हैं। कारण है कि वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दिया है, और मैं सोचूं आज किसी व्यक्ति को मैंने ब्लड डोनेशन करवाएगा और परसों उसके परिवार में जरूरत पड़ गई, तो निश्चित हम उसके लिए आगे आकर तैयार रहेंगे। उसके घर में देने वाला नहीं है तो हमारा दूसरा डोनर तैयार,
1: परिवार की तरह
0: परिवार बन जाता है। बिल्कुल।
1: अच्छा, आपका कोई ऐप भी है, और ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है, आपने मुझे अभी बातचीत करते हुए बताया था।
0: जी, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से ऐप भी है, और वैसे तो ज्यादा तो मेरे खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर चलते हैं। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप करता है, काफी गांव से लोग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उनको नंबर ही याद रहते हैं, वो ऐप वो मैं ध्यान नहीं दे सकते या वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरी मोबाइल नंबर की व्यवस्था भी बनाई रखी है, आप तो कॉल कर दो। ब्लड बैंकों में भी हमारे नंबर है, उस मोबाइल पे कॉल कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो भी उसकी व्यवस्था हम प्रायोरिटी से करवा
1: रखते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है
0: जी,
1: ये किस तरह से काम करता है और ये कैसे पहुंच जाता है जिसको जरूरत होती है?
0: हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफी डोनर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बी पॉजिटिव का अलग बनाया हुआ है, ए बी पॉजिटिव का अलग बनाया हुआ, अलग अलग ग्रुप वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए।
1: मतलब आपके पास यदि कोई फोन आया
0: जी
1: तो आप वो पूछेंगे उसका ग्रुप का नाम और उसको फॉरवर्ड कर देंगे।
0: जैसे कि मेरे पास आया ब्लड बैंक की गांधी अस्पताल में ए पॉजिटिव चाहिए फ्रेश ब्लड या एचडीपी, तो मैं वो रिक्वायरमेंट लेटर है उस ग्रुप के अंदर डाला, उस ग्रुप के अंदर से ए पॉजिटिव वाला बंदा हाथ खड़ा कर दिया और वो तुरंत ब्लड बैंक पहुंच
1: जाता। मतलब आपका पूरा नेटवर्क है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, कोई व्यक्ति आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो
0: जी, जो हमारे
1: आप उसके कोई कोई टेस्ट वगैरह कराएंगे कैसे क्या?
0: हम वैसे हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है रक्तदान। हम रक्तदान करवाते हैं तो पूरा बॉडी के पैरामीटर टेस्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति नहीं करने के सामर्थ्य है, यदि नहीं भी कर सकता है, काफी लोग ऐसे भी हमारे साथ के भी हम सेवा देना चाहते हैं तो कैंपों में सेवा देते हैं, कोई फ्रूटी पिलाता है, कोई डोनर के फॉर्म भरवाता है, कोई उसका काउंसलिंग करता है, इस टाइप से अलग अलग सेवाएं हैं, वो काफी लोग वॉलंटियर भी काम करते हैं।
1: अच्छा, आपकी जो ये संस्था है वो और रक्तदान के अलावा
0: जी
1: और भी कुछ सामाजिक क्षेत्रों में काम करती है?
0: हम रक्तदान के अलावा रक्तदान करते हैं, और रक्तदान के साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनकी हम एक काउंसलिंग करते हैं, उन्हें उनके एनीमिया की जांच करवाते हैं, उनकी सीबीसी करवाते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं कि बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन कम नहीं हो, वो एनेमिक नहीं हो या ऐसी कोई डिजीज नहीं हो, पहले ही पता चल जाए तो समय पे उसका इलाज हो जाए। ये एक हमारा बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है। फिर हम प्रत्येक साल गवर्नमेंट में पढ़ने वाली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चाहे कुछ भी हो, एक उनको पारितोषिक के रूप में हम प्रत्येक साल 51 बालिकाओं को छात्रवृत्ति देते हैं।
1: बहुत सुंदर।
0: उसके साथ ही जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम का विषय देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर बारिश नहीं हुई थी, गर्मी बहुत तेज थी, तो गांवों में हमारे 11,000 टैंकर का मिशन था, तो हमारे युवा जितने भी

0: हुए हैं वो उसके अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं. गांव गांव किसी गांव के अंदर कोई खेली बनी हुई है, किसी गांव के अंदर कोई पोखर बना हुआ है, कोई तालाब बना हुआ है, वहां टैंकर कुटवाना, वहां से फोटो शेयर कर देनी, लोकेशन शेयर कर देना. इस टाइप से एक जल मिशन भी हम कंटिन्यू
1: चला
0: चलाते
1: रहे
0: हैं.
1: हैं. बहुत सुंदर, आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हमारी समय सीमा है,
0: जी जी जी
1: तो कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे?
0: मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे भारत के भविष्य जो भी युवा है, क्योंकि युवा है वो एक विकसित देश का विकास करता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, चाहे मुख्यमंत्री जी ले लो, चाहे हमारे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति को ले लो, हमारे सेना के जवान को ले लो, वो हमेशा युवा को टारगेट करते हैं. और युवा यदि समाज का सही दिशा में चलेगा तो वो समाज, वो भी हमारा देश आगे बढ़ेगा. तो मैं युवाओं से यही आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कहना चाहूँगा, यदि आप स्वस्थ हो और सही हो

0: आकाशवाणी के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे भारत के भविष्य, जो भी युवा है, क्योंकि युवा है वो एक विकसित देश का विकास करता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, चाहे मुख्यमंत्री जी ले लो, चाहे हमारे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति को ले लो, हमारे सेना के जवान को ले लो, वो हमेशा युवा को टारगेट करते हैं। और युवा यदि समाज का सही दिशा में चलेगा तो वो समाज, वो भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं युवाओं से यही आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कहना चाहूँगा, यदि आप स्वस्थ हो और सही हो शारीरिक रूप से
1: जी,
0: तो आप रक्तदान जरूर करें,
1: जरूर करें।
0: और रक्तदान नहीं कर सकते हो तो आप किसी की मदद जरूर करें। मैं यदि समझे तो आध्यात्मिक में एक मानव जीवन है वो सबसे बड़ा जीवन है, यदि उसके अंदर कुछ कर जाए तो मैं सोचता हूँ वो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
1: धन्यवाद रजत जी, बहुत अच्छे सुलझे हुए आप हैं और वैसे ही आपके ऊंचे विचार, इसीलिए आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने समय दिया आज के दिन, विशेषकर आज के दिन
0: जी,
1: आप आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी वाटिका और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी हंसा विश्नोई। तो आज का जो दिन है, आज से शुरू होती है राजस संक्रांति उड़ीसा में। लगातार 3 दिन तक ये त्यौहार चलता है, बड़ा प्यारा त्यौहार होता है, बहुत लोकप्रिय है, नारी शक्ति को समर्पित प्रोग्राम होता है ये। इस उत्सव में जो इसके जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम में अब आप सोचिए कि मानसून आने वाला है और ये जो धरती है वो धरती बारिश के लिए बैठी है, प्यास बुझाने के लिए वो तैयार है। और ठीक ऐसे उत्सव पर ही बहुत सुंदर सुंदर ऐसे ही लोकगीत चलते हैं, जैसा भी आपने सुना। ऐसी मान्यता है कि जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होता है और उसकी जो उसकी प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, ठीक ऐसे ही 3 दिन तक धरती माँ के मासिक धर्म के ये दिन माने जाते हैं। तो धरती को पूरा विश्राम दिया जाता है, सारे जो कृषि कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इस दौरान धरती को न खोदा जाता है, न वहाँ से कुछ काटा जाता है, न उसको तोड़ा जाता है, पूरी तरह से धरती को विश्राम दिया जाता है। और अब क्योंकि आने वाला जो समय रहता है, उस समय में जो गाँव के युवा लोग हैं उन्हें अब खेती किसानी करना है, तो पूरा वो तैयारी तो कर ही चुके हैं, अब उन्हें उस बारिश का इंतज़ार है और कीचड़ दलदल लगातार बारिश से जो उनको सराबोर कर देगा, ऐसी हालत के लिए वो तैयार होते हैं, आराम करते हैं। पूरी कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां रहती है वो सब ठप रहती है और इस आनंदमय वातावरण में गांव के जो युवक हैं वो आराम से नृत्य करते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। मतलब जितना भी हमारी संस्कृति में जो चला आ रहे हैं पारंपरिक खेल हैं वो सब इस दौरान ही खेले जाते हैं, खूब नाचा जाता है, जश्न मनाया जाता है।
6: लागा गोरी गुजरिया से

साथियों, मंटो ने लिखा था एक बार के आसिफ के लिए कि कुछ खास तो नहीं किया, पर खुद पर भरोसा था कि सामने वाला इंसान भी घबरा जाए। तो ऐसे आत्मविश्वास से भरे के आसिफ, करीमुद्दीन आसिफ का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। इटावा में आज ही के दिन 1922 में इनका जन्म हुआ था। पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे के आसिफ। इनकी बनी 1960 में जो मुगले आजम फिल्म थी उसके लिए ये जाने जाते हैं, और ये जो फिल्म थी वो भारतीय सिनेमा इतिहास की बड़ी भव्य फिल्म थी, सबसे बड़ी फिल्म, सफल फिल्म। इसके लिए के आसिफ ने लगभग 15 वर्ष तक संघर्ष किया। इसकी शूटिंग उन्होंने 1940 में शुरू की थी।

और जब ये रिलीज हुई तो उस समय 1960 था. अब आप सोचिए 40 क्या ये मैं कहूँ कि ये इसको लगभग 20 वर्ष के करीब इन्होंने इनके दिमाग में ये फिल्म चलती रही होगी. काम तो इन्होंने किया ही. अब देखिए ये दौर था, उस समय पाकिस्तान बना था, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था और कितने ही इनने जो तय कर रखे थे, जो कलाकार तय कर रखे थे, वो कई कलाकार तो चले गए पाकिस्तान में और कई नहीं रहे इस दुनिया में. इस फिल्म की बात करें तो इसकी जो भव्यता थी उसके किस्से आज भी सुने जाते हैं. जैसे इसमें जिन जूतों का इस्तेमाल था वो आगरा से मंगाए गए थे और जो आभूषण थे वो शुद्ध थे, नकली नहीं थे, और वो हैदराबाद से बनवाए गए थे. यहाँ तक कि ढाल तलवार वो भी हमारे राजस्थान से ली गई थी और जो कपड़ों पर जरदोजी का काम था वो भी सूरत से बनवाया गया था. तो सोचिए सब कुछ असल, सब कुछ. और यहाँ तक कि उस समय जो बड़े गुलाम अली खां थे वो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी फिल्मों में गाते नहीं थे, लेकिन के आसिफ जो थे वो उनके पीछे पड़े रहे. आसिफ साहब ने हार नहीं मानी और अंततः उनको 25,000 की पेशगी दी गई. अब आप सोचिए उस जमाने में इतने पैसे बहुत ज़्यादा थे. फिर गुलाम अली साहब ने ये गीत गाया.

तो ये थे बड़े गुलाम अली खान, जो फिल्मों में गाते नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में वो उन्होंने गाना मंजूर कर लिया, और बड़ा अलग हटके, बड़ी प्यारी सी गहरी आवाज़। तो आसिफ साहब जो थे, वो बता दूं सखियों कि जब भी आपके पास कोई काबिलियत होती है तो उसके लिए शिक्षा की डिग्री कोई काम नहीं करती। महज 8वीं जमात तक पढ़े हुए थे आसिफ साहब, और उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई। तो ये सारा काम होता है आत्मविश्वास से, और जब हम अपने आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को साधते हैं तो फिर हम उसमें सफल तो होते ही हैं। ये जो फिल्म थी मुगले आजम, वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए

रुपए में बनी थी और उस जमाने में आप सोचिए इतनी कीमत। और ये भारतीय सिनेमा इतिहास में कई मामलों में मील का पत्थर साबित हुई हर तरह से। अब आप इसका संगीत सुनिए या आप इसका चित्रांकन देखिए या आप इसकी अदायगी देखिए या आप इसके वाक्य देखिए, आप इसके सेंटेंस देखिए जिसमें ये बड़े खूबसूरती से हर एक कलाकार, और वो कलाकार आज भी वैसे ही उन अपने उन संवादों के जरिए याद किए जाते हैं। संगीत के लिए कहा जाता है कि ये नौशाद साहब के पास गए और उस समय नौशाद साहब से इन्होंने कहा कि देखो मुझे बहुत उम्दा संगीत चाहिए और ये मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, और ये अपने साथ एक नोटों का ब्रीफकेस लेकर गए थे। लेकिन नौशाद साहब ने हंसते हुए उसे नकार दिया और कहा कि हुजूर ये जो म्यूज़िक है उसकी क्वालिटी पैसों से कभी नहीं आती। सच कहा उन्होंने। अच्छा एक रोचक बात और, इसमें पहली बार सेना के घोड़े और सेना के हाथी, सेना के जवान उनका इस्तेमाल किया गया और इसके लिए उन्होंने आसिफ साहब ने रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन जो उस समय थे उनसे अनुमति ली थी। तो आप सोचिए हर काम अनूठा। और अब जो हम आपको गाना सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये गाना उन्होंने बाथरूम में गवाया था इको के लिए, ध्वनि के लिए, और वो संतुष्ट नहीं हुए थे जब ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया जा रहा था तो आसिफ साहब इससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने इस गाने को एक बाथरूम में ले जाकर लता जी से ये गवाया था। तो सुनते हैं ये गाना।

समय से तो डरना पड़ता है और समय के बहाव में हम इस मुकाम तक आ गए कि अब आपसे विदा लेने का भी समय हो गया है। तो कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ थे फारूक अहमद शेख, एचपीटी ट्रांसमीटर से विक्रम सिंह भाटी, राय सिंह राव, और हमारे इस प्रोग्राम की का संयोजन और परिकल्पना की थी मनीष सोलंकी जी ने। और कंसोल से आपको इतने मधुर जो गीत सुनवा रही थी वो थी पद्मनी बोहरा जी और मैं आपकी सखी हंसा विश्नोई। तो अब अनुमति दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे इसी भाव के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंची है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों

0: में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

सुनहरे रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

शुदा नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैक मेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्ची

सुहागी फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का, लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है, क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

0: Marshal.
1: महारानी गांधारी, आपका पुत्र विकर्ण मारा गया।

चित्रसेन उपचित्र सुचारू चित्राक्ष नंद और उपरांत मारे गए।

महाराज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद, गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहे।

आज भीम के हाथों दुशासन भी मारा गया।

0: समझे, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव, दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गईं, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो गांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था?

0: किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
1: नहीं कृष्ण नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
0: देवी गांधारी,
1: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
0: मुझे क्षमा करो माता।
1: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
0: माता, जो अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
1: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वलकल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही, कविता ही खो गई तुम्हारे मन की।

0: मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श

0: क्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप।
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंकु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर अहर्निश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिया?

0: दिशा थी, हम राधी भी नहीं, हम है महाराज, हम
1: गंधारी। देखो मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
0: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
1: गंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
0: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
1: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
0: महाराज,
1: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए, अब मन कैसा तृप्त है। इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
0: रुकी रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
1: तुम भी?
0: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
1: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
0: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओ, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता। तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरिदर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा,
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा। हाँ
1: ठीक है, मतलब हाँ। वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो बड़ी हो गई थी।

0: बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया। वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मितुल जी कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप?
1: हाँ,
0: जी ने
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
0: हाँ,
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरती के साथ।
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
0: क्या बात है। हाँ, क्या बात,
1: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम
0: थे।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार पसंद है।
1: तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट,
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है,
1: हर पल के। तो ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानित के उस माहौल में भी थे जहां रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे, उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिल

0: ना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक

0: ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
1: अच्छा,
0: इतनी मजबूत है।
1: क्या बात है,
0: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर
1: है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
0: जी
1: उसको खड़ा किया।
0: हाँ
1: जी मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
0: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
1: जी
0: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुली का आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
1: जी,
0: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
1: जी,
0: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
1: जी,
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
1: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी,
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
1: जी, जी।
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा।
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया,
0: मकसद मिल गया और सिखाने

0: में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: बदल जाता है।

0: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
0: ड्राइंग
1: करते
0: तो
1: रहे।
0: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, इतना सारा है,
0: अनंत है,
1: अनंत है, आप क्या सिखा

0: जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं,
1: ऑयल पेंटिंग
0: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। अब जो करना चाहो तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, ये आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
0: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको, आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, नहीं। अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम है, हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी
2: यार, सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहे, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे, और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की है, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना

0: बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है.
1: बिल्कुल.
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए.
1: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का सभी तरह के.
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट. और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए.
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से. उनका जैसा कोई नहीं.
1: बहुत सुंदर.

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते।

0: और 40 बिल्लियाँ और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं।
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं।

0: आशीर्वाद है तो हो जाता है सब।
1: जी जी, जी। ये तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
0: वो परिवार है और सबके नाम है
1: जी, जैसे
0: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
1: अच्छा
0: है ना, जैसे ब्राउनी है,
1: हाँ,
0: ब्लैकी है,
1: उनको पता ही उनके
0: हाँ,
1: नाम है,
0: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है।
1: अच्छा, सो ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
0: हाँ हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब बहुत हो गया।
1: जी, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
0: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
0: पूरा पूरा जंगल है और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
1: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
0: जरूर सुनवाइए।

0: रखिए, ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए, और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
1: जी।
0: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
1: जी,
0: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
1: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
1: जी,
0: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की, उजाले।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

क्या बात है दोस्तों, लगता है कि सूरज जो है वो हमें जलाने ही वाला है। और लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन हम भी जो है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। यानी कि हमारा जो संडे है वो हम अच्छे से एंजॉय करने कहीं ना कहीं जो है वो निकल ही जाते हैं। और दोस्तों, शाम की जो कहते हैं ना कि इस ढलती शाम में जो है वो जुड़ चुका हूँ मैं आपका रेडियो बड़ी आपके साथ, यानी कि मैं विकास कार्यक्रम युवाणी लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है फोन इन। यानी कि जो भी श्रोता जो है वो हमसे बात करना चाहते हैं वो हमें कॉल लगा सकते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे तक जो है वो आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा भी दीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके लिए जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू भी है, जो कि हम आपको आगे शो के आगे जो है वो चलकर सुनाएंगे ज़रूर। तो आइए दोस्तों, इस शाम को शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में। तो सबसे पहले तो आज के दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसको मैं बता दूं कि आज के दिन जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो है वो शुरुआत की गई थी। 14 जून को जो है इस दिन को मनाया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ जो इस दिन का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि इस दिन की जो शुरुआत है वो WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में की थी। वहीं 2005 में जो है वो इसे एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में जो है वो घोषित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसके पीछे की जो प्रिंसिपल है वो ये है कि 14 जून की तारीख चुनने का मेन रीज़न यही था कि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्मदिन भी है जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो है वो खोज की थी। तो श्रोताओं आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या आपने कभी ब्लड डोनेशन किया है? अगर हाँ तो आपका अनुभव कैसा रहा है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अनुसार जो है वो ब्लड डोनेशन करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या होनी चाहिए? साथ ही साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यूथ है उनमें ये भी मिथ है कि ब्लड डोनेशन करने से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या जो उनके फियर है मन में, तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का सवाल आपने सुन ही लिया होगा, तो जल्दी से जो है वो आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें मिलाइए। हमारे नंबर है 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जैसा कि श्रोताओं अभी मैंने बताया था कि आज जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और आज के इस स्पेशल दिन पर जो है वो आप सभी के लिए एक बहुत ही खास इंटरव्यू है जो कि आपको सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं आज स्वास्थ्य की बातचीत जितेंद्र बांता जी से जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक्तकोष फाउंडेशन जोधपुर के। आइए सुनते हैं ये वार्ता।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त आरजी स्वस्ति। हर साल हम 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं ताकि उन लोगों को सम्मान दे सके जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं और दूसरों के जीवन बचाने में सहयोग करते हैं। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहा जाता है कि किसी की मदद करने का सबसे सुंदर तरीका है उसे जीवन का उपहार देना। रक्तदान ऐसा ही एक अनमोल उपहार है जो किसी जरूरतमंद के लिए नई उम्मीद और नया जीवन लेकर आता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे रक्तदान के महत्व, उससे जुड़ी जागरूकता और समाज में इसकी आवश्यकता के बारे में। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र बांता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर क्या जुड़ाव कैसे होता है।
1: जी मैम, मेरा नाम जितेंद्र बांता है। मैं रक्तकोष फाउंडेशन से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और 2017-18 में मुझे रक्तकोष फाउंडेशन जोधपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया गया था और आज भी मैं रक्तकोष फाउंडेशन के साथ मिलकर रक्तदान में कार्य कर रहा हूँ। हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, रक्तदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान हो।
0: ये क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस?
1: विश्व रक्तदाता दिवस मैम, रक्तदान की आज भी मतलब लोगों को महत्व पता नहीं है, लोग रक्तदान करने से डरते हैं। एक मतलब दिन होता है जिसमें हम रक्तदान को सेलिब्रेट करते हैं।
0: और ऐसा लोग बोलते हैं कि रक्तदान सबसे महादान होता है, ऐसा क्यों?
1: हाँ, रक्तदान सबसे अमूल्य दान होता है, ठीक है ना। रक्तदान का कोई मूल्य नहीं होता है, जो अपने खुद के शरीर में बनता है, जिसको आज आप कितने भी पैसे दे के खरीद के नहीं ला सकते रक्त को। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाए, सबसे ज्यादा जो अमूल्य जो चीज है वो रक्तदान होता है।
0: और आज के समय में रक्तदान की क्या महत्वता है, कितना ज्यादा आवश्यक है ये?
1: रक्तदान बहुत जरूरी है। रक्तदान से आज अपन हजारों जिंदगी बचा सकते हैं। एक रक्तदान से किसी एक इंसान ने रक्तदान किया तो उससे 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है। इसमें रक्तदान में PRBC अलग होती है, प्लेटलेट्स अलग होते हैं, प्लाज्मा अलग होता है, तो 3 अलग अलग लोगों में ब्लड जाता है तो 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो रक्तदान की बहुत ज्यादा महत्ता है। लोग आज भी डरते हैं बट रक्तदान ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए।
0: और जो हम जैसे युवा है, उन युवाओं को क्या गलतफहमी होती है रक्तदान को लेकर?
1: लोग डरते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, रक्तदान करने से हमें कोई बीमारी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रक्तदान करने से जो ऑलरेडी जो बीमारियां होती है तो वो बीमारियों से अपन मतलब दूर हो सकती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, आपका BP नहीं बढ़ेगा। आप समय पर रक्तदान करोगे तो वापस नई RBC बनेगी, तो आपको वापस मतलब नया ब्लड बनेगा, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी।
0: तो मतलब हम युवा जो सोचते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाएगा या जो घबराते हैं, उनको नहीं घबराना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई वजन बढ़ता नहीं है, कोई वजन घटता नहीं है। आपका सिर्फ 300 ml ब्लड लिया जाता है, ठीक है ना। बॉडी में करीब 5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें से ओनली 300 ml ब्लड लिया जाता है। वो वापस 24 घंटे में 48 घंटे में वापस रिकवर हो जाता है। तो इतना कोई घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, सबको आगे आके रक्तदान करना चाहिए।
0: और हमारे शरीर में से जो 1 यूनिट रक्त लिया जाता है उससे कितने लोगों की मदद हो सकती है?
1: 1 यूनिट में 300 ml रक्तदान लेते हैं, जिससे 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है। जिसमें मैंने पहले बताया कि उसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और एक RBC, तीनों अलग अलग सेपरेटली होते हैं और तीनों अलग अलग लोगों के शरीर में जाता है, तो 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है।
0: और युवाओं की जो भूमिका है रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, वो कैसे महत्वपूर्ण है?
1: युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं को आगे आके रक्तदान करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आजकल लोग युवा काफी लोग आगे भी आए हैं बट आज भी लोग डरते हैं। महिलाएं डरती है, महिलाएं कहती है हमें कमजोरी आ जाएगी, वो आ जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता ऐसा। जबकि रक्तदान करने से आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो रक्तदान सबको करना चाहिए और युवाओं को इसके लिए बहुत आगे से आगाना चाहिए। अपने जन्मदिन, अपने एनिवर्सरी पे फालतू की पार्टी ना करके रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी जिंदगी की अपन जिंदगी बचा सकते हैं।
0: और जो लोग डरते हैं, अभी भी नहीं करते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, या वो सुई से जो अभी भी लोग डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, बस एक वो मन में भ्रांति है कि मतलब रक्तदान करने से अपने ये हो जाएगा रक्तदान करने से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक बार रक्तदान करोगे तो सेकंड टाइम आप खुद ही रक्तदान करने चले जाओगे, क्योंकि रक्तदान बहुत इजी मतलब प्रोसेस होता है। एक सिर्फ 2-4-5 मिनट का प्रोसेस होता है। 4-5 मिनट में 300 ml ब्लड ले लेते हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। नॉर्मल निडल होती है, एक मतलब पता ही नहीं चलता है कब ब्लड लिया। तो रक्तदान करना चाहिए सबको।
0: और रक्तदान को लेकर आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में क्या उम्मीदें हम सबकी?
1: रक्तदान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। रक्तदान मतलब आज पहले रक्तदान कम होता था, आज फिर भी बहुत सारी संस्थाएं आगे आई है

0: और रक्तदान करवा रही है। आज हमारी संस्था जो रक्तकोष फाउंडेशन है उसके द्वारा करीब हमने 1,75,000 यूनिट रक्तदान हम करवा चुके हैं। अभी 6 सालों में हमने 1,75,000 यूनिट हमने रक्तदान करवा दिया है। हमारी जो रक्तकोष फाउंडेशन है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाली संस्था है, ठीक है ना। तो और भी कई संस्थाएं आगे आई है और संस्था आगे आने से रक्त की कमी अब थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि थैलेसीमिया जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारा रक्त जाता है, तो रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए, अपने बर्थडे एनिवर्सरी पर रक्तदान शिविर लगाने चाहिए ताकि रक्त की कमी नहीं हो।
1: तो पहले जो लोग बोलते थे कि रक्तदान एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमें खून की कमी अभी भी होती है लोगों को, क्या अभी भी वो एक सबसे बड़ी चुनौती है?
0: चुनौती जैसा कुछ भी नहीं है, बस लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। लोग है ना रक्तदान करने से आज भी डरते हैं, वरना आज इतनी बड़ी रक्त की कमी नहीं होती। आज अभी गर्मियों के सीजन में अभी सब ब्लड बैंक खाली पड़े हैं, आज भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, अपने खुद के परिवारजन के लिए आज ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं। लोग हमें कॉल करते हैं कि साहब ब्लड, एक यूनिट ब्लड दिलाओ। अब उनके घर वाले सब, हस्बैंड वाइफ सब बैठे हैं, बट वो रक्त नहीं देना चाहते हैं। वो हमें बोलते हैं कि सर एक यूनिट रक्त करवाओ, एक यूनिट अरेंज करवाओ। हम किसी डोनर को, वो भी एक रक्तदाता है, वो दिन रात नहीं देखता है, वो जाके डोनेट करता है, ठीक है ना। तो लोगों को आज भी मन में ये डर बैठा हुआ है। बस मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए, लोगों को जन जागरूकता अभियान करने चाहिए ताकि रक्त की कमी दूर हो सके।
1: और जिन लोगों ने अभी तक खून नहीं दिया एक बार भी, या जो पहली बार देने जा रहे हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे?
0: पहली बार सबसे पहला है कि डरना नहीं चाहिए, रक्तदान करने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल एक अपने नॉर्मल अपने ब्लड सैंपल लेते हैं, उतना सा नॉर्मल एक प्रिक होता है और उसके बाद में कोई भी दर्द नहीं होता है। बिल्कुल इजीली 2 या 3 मिनट का प्रोसेस होता है, 2-3 मिनट में रक्तदान आराम से कर सकते हैं। और जो पहले रक्तदान करेगा तो उसको सेकेंड थर्ड टाइम अपना आप ही उसको खुद को मन में इच्छा होगी कि मैं रक्तदान करूँ, क्योंकि किसी की जिंदगी बचेगी तो जो अपन किसी की जिंदगी बचाते हैं तो मरीज के जो परिजनों के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, तो उससे अपना आप ही आगे रक्तदान करने की अपन को मतलब आती है कि अपन को आगे आके रक्तदान करना चाहिए।
1: मतलब रक्तदान केवल आपातकालीन परिस्थिति में काम आता है या उसके अलावा भी काम आता है?
0: आपातकालीन परिस्थिति में तो काम आता ही है और रूटीन भी। आज जैसे कोई फीमेल एडमिट है, सिजेरियन है, उसके कुछ भी दिक्कत है, तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा आजकल मतलब रक्त की कमी होती है। तो रूटीन कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें भी रक्त की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। आपातकालीन में तो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान करके रखना चाहिए ताकि ब्लड बैंक को जितने अपन रक्तदान शिविर देंगे तो आपातकालीन में कोई मरीज आएगा तो उसकी ज़िंदगी बचा सके। क्योंकि आपातकालीन में एक्सीडेंट केस आ गया तो उसको 10-10 यूनिट 15-15 यूनिट रक्त मतलब चढ़ता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करेंगे तभी तो उन पेशेंट की जान बचा सकेंगे।
1: बिल्कुल, हमारा जो समाज, हमारा जो देश है ना, उसमें रक्तदान की क्या महत्व है, क्या जरूरत है वो भी?
0: रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। रक्तदान करने से आज अपन किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आज अपने ये चीज अपने खुद के मतलब ऊपर अप्लाइड होगी तब पता चलेगा कि रक्त की क्या महत्व है। अपने खुद का कोई परिवारजन बीमार होगा, उसको रक्त की जरूरत होगी, तब अपन इधर उधर करेंगे, तब अपन को ब्लड नहीं मिलेगा, तब अपन को रक्तदान की महत्व पता चलेगी। इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। अगर सब रक्तदान करेंगे तो अपने देश में रक्त की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। रक्त आज ब्लड बैंक जैसे खाली पड़े हैं, वो ब्लड बैंक खाली नहीं दिखेंगे, उनमें पूरा प्रॉपर रक्त मिलेगा। तो आज पेशेंट की कोई भी इमरजेंसी केस हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको इमरजेंसी रक्त मिल पाएगा।
1: बिल्कुल। और जो रक्तदान करने वाले हैं उनको समाज में कैसे प्रेरित या सम्मानित किया जाता है?
0: रक्तदान जो करने वाले हैं उनको समय समय पे मतलब रक्तदान सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें उनको एक मतलब एक होता है कि उनको मतलब प्रेरित करें ताकि और भी आगे आके रक्तदान करें लोग, ठीक है ना। तो सम्मान समारोह आयोजित करते हैं तो उसमें रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाता है।
1: हम सभी को ना नियमित रक्तदान करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम रोज जाके नहीं देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लगते भी हैं पर हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम दे नहीं पाते हैं, तो रोज पर हमें क्यों जरूरी है?
0: रोज देना भी नहीं होता है रक्तदान। एक्चुअली अपने जो पुरुष है उसमें हर 3 महीने में रक्तदान, मतलब यह माना गया है कि 90 दिन में रक्तदान करना चाहिए, हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। और महिलाएं उनको हर 4 महीने में रक्तदान करना चाहिए। अगर प्रॉपर समय पर रक्तदान करेंगे तो रक्त की कमी अपने देश में रक्त की कमी नहीं होगी। प्रॉपर अपन हर तीन महीने में ये ठान ले कि अपन को रक्तदान करना है तो आगे जाके रक्त की कभी कमी महसूस नहीं होगी।
1: बिल्कुल, जैसे आज विश्व रक्तदाता दिवस है तो आपने क्या आयोजन किया है इस दिन को और अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए?
0: हमारे रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा एक बहुत बड़ा जयपुर में अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हम रक्तकोष फाउंड, हमारी संस्था एक्चुअली राजस्थान के हर जिले में बनी हुई है। राजस्थान के करीब 33 जिलों में हमारी संस्था कार्यरत है। उसके अलावा हमारी संस्था मुंबई, अहमदाबाद और वहाँ पे भी संस्था कार्यरत है। तो जितनी भी संस्था के पदाधिकारी है उन सब वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे। और हमारे डॉक्टर आदरणीय जितेंद्र कुमार सोनी है, वो IAS है और इस संस्था के संस्थापक जी है, तो वो भी उस संस्था में अपना मतलब संस्था का

0: बड़ा अधिवेशन है वो जयपुर में हम 14 जून को आयोजित कर रहे हैं, जो उसमें मीटअप होगा और रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस पे?
0: विश्व रक्तदान दिवस पे मेरा यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे आके रक्तदान करना चाहिए। युवा अगर आगे आके सब ठान लेंगे, रक्तदान करेंगे, तो कभी भी रक्त की कमी महसूस नहीं होगी। आपका एक यूनिट रक्त से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो। 3 की आप अगर नियमित रक्तदान करोगे तो कितने लोगों की जान बचा पाओगे? आज इमरजेंसी में रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तब कोई नहीं होता है उसके साथ में। जैसे कोई अननोन पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसके साथ में देने वाला कोई नहीं है। अगर वहाँ पर ब्लड अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड बैंक स्टाफ उनके रक्त अवेलेबल करवा के उस पेशेंट की जान बचा पाएंगे। अगर रक्त नहीं होगा तो उस पेशेंट की जान कैसे बचाएगी?
1: बिल्कुल, ये बात तो है। और खून देने से पहले या बाद में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, रक्तदान कभी भी भूखे पेट नहीं करना चाहिए। अपन को कुछ ना कुछ लिक्विड और सॉफ्ट कुछ खा के फिर ही रक्तदान करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मतलब कुछ खाया नहीं और रक्तदान कर दिया, तो उसके बाद में उसको, पहली बात तो 24 घंटे पहले कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं करी हो। अगर ड्रिंक की हुई हो तो वो डॉक्टर को प्रॉपर बता दे कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, या कोई उसको बीमारी है पहले से, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन है, तो वो पहले से डॉक्टर को बताए, छुपाए नहीं, क्योंकि आपका रक्त से किसी की जान जा भी सकती है। आपने अगर आपके आपके हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है और आपने ब्लड दे दिया, तो वो किसी और के शरीर में जाएगा, तो उसको हो सकता है, उस पेशेंट के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर को प्रॉपर बताना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी है और सर मैंने ये अल्कोहल ले रखा है, तो उसका प्रॉपर उसको गाइडेंस कर रहे, डॉक्टर सारा पूछता है उनको। वो कई बार छुपा देते हैं कि साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमने ड्रिंक नहीं कर रखी है, बट उन्होंने ड्रिंक की होती है। तो वो जो ब्लड में 24 घंटे में ब्लड शरीर में रहता है, तो वो उसके रेसेज उसमें भी जाते हैं, तो उस पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ खाके रक्तदान करें।
1: और उसके बाद कैसे ध्यान रखें, जैसे ब्लड दे दिया उसके बाद अपना कैसे?
0: ब्लड देने के बाद कुछ भी लिक्विड जूस वगैरह जरूर लेवे, बिल्कुल ऐसे नहीं रहे, चक्कर वक्कर आए तो साधारण सिंपल लेट जाए। आप बिल्कुल डरे नहीं रक्तदान करने से, और कुछ ना कुछ आप लिक्विड वगैरह जरूर लेवे रक्तदान करने के बाद में।
1: और कई कुछ लोग होते हैं शायद वो बीमार होते हैं, उनको जुकाम बुखार भी होता है, लेकिन फिर भी वो खून देने आते हैं, तो क्या वो सही है?
0: नहीं, वो सही नहीं, इसीलिए मैंने ये बोला कि लाइन की उन किसी को फीवर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटिक, कोई भी तरह की बीमारी है जैसे थायराइड है, वो पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट जरूर करें। अगर किसी को फीवर है तो उसको, अगर वो एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उसको 7 डेज तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर को बताएं कि सर मेरे को ये फीवर आ रहा है, मैं 3 दिन से मेरे को फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर अपना मना कर देंगे कि भाई आप नेक्स्ट शेड्यूल में कभी भी आप 7 डेज बाद में रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्त जितना मतलब किसी की जिंदगी बचा सकता है, उतनी जिंदगी ले भी सकता है। तो आप प्रॉपर मतलब डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही से आंसर दे। हर कैंप में, हर ब्लड बैंक में एक डॉक्टर्स होता है जो आपको सवाल पूछते हैं कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपने ये, आपके कोई टेबलेट तो नहीं चल रही है, तो प्रॉपर डॉक्टर को बताएं ताकि आपका रक्त किसी की जिंदगी मतलब खराब नहीं करे बस।
1: बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही कही आपने कि रक्तदान तो करना चाहिए सबको, और खुद का ध्यान भी साथ में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और आखिर में आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं को यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रक्तदान करना चाहिए, सबको आगे आके रक्तदान करना चाहिए। अपने एनिवर्सरी, अपने जन्मदिन पे आप कोई भी पार्टीज नहीं करके, आप कहीं घूम फिर के फालतू का खर्चा करके, इससे बढ़िया रक्तदान करो, तो किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी, तो आपका बर्थडे वैसे ही सक्सेस हो जाएगा। आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो आप लोगों को, किसी कपल को रक्तदान दो, तो किसी की जरूरत, किसी के टाइम रक्त किया गया, उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी, तो अपन अपना आप ही मतलब एक हैप्पी हो जाएंगे कि, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान।
1: बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो रक्तदान करना ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए थोड़ा सा समय और एक यूनिट ब्लड किसी के चेहरे पे मुस्कान और जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। इसी संदेश के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, हमारे कार्यक्रम युववाणी में जुड़े उसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद ना।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप
3: डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
0: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना बहुत ही शानदार इंटरव्यू, जहां पर बताया गया जितेंद्र जी के द्वारा कि किस तरीके से जो है वो किस आयु वर्ग के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्या क्या मिथ है उसके बारे में और क्या क्या फैक्ट्स है। तो श्रोताओ, अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो है वो हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन मिला सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 02912553300, और हमारा दूसरा नंबर है 02912554300। लगता है श्रोताओं, आज का जो हमारा पहला कॉल है वो आ चुका है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: जी, शंकरलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी
0: जी, शंकर लाल जी, सबसे पहला तो आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में।
1: सर, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, प्लीज थोड़ा आप लिस्टर का ईयरफोन वॉल्यूम बढ़ा सकती है। जी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़?
1: सर, आप सुन पा रहा हूँ।
0: जी। तो शंकरलाल जी, जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि आज के दिन जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है?
1: सर, अभी मैं जितेंद्र जी की बातें सुन रहा था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, सर मुझे इतना अच्छा लगा। वाकई में ये भ्रांति तब होती है जब किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया हो। जब
0: जी
1: ब्लड
0: जी
1: डोनेट करने के बाद सारी भ्रांतियां मिट जाती है।
0: जी
1: सर मुझे याद है 2010 में मेरे इधर शॉप के पास में एक कोई कैंप लगा था ब्लड डोनेट का।
0: जी
1: पहले तो
0: जी
1: मैंने मना किया, नहीं सर, वो तो कहते हैं ना क्या ना, कमजोरी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। उन्होंने समझाया भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है,
0: जी
1: आप
0: जी
1: एक बार करके तो देखो। तो
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
1: मुझे लिटाया, उसके बाद फिर एक एक एक छोटा सा तराजू था, उसके ऊपर एक थैली रखी उन्होंने, और मतलब 2-3 मिनट हो गया। और मैंने बोला क्या हुआ? क्या हो गया?
0: जी।
1: मैंने कहा हो गया? हाँ, बस आपका तो पूरा शरीर का थोड़ी खून लेना है, सिर्फ 300 ml ही लेना है। तो
0: जी।
1: उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शंकरलाल जी, 1 यूनिट के आपका ब्लड लेने से हम लोग 3 लोगों की जिंदगी बचाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा
1: उसके
0: आपने। तो
1: बाद जोधपुर के अस्पतालों में जो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं जिनको रोज खून चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो उनको किसी न किसी रूप में ये खून जाता है।
0: जी।
1: जिनको डायलिसिस होती है या लेडीज का जिनका सिजेरियन होता है, उनको
0: जी
1: ब्लड
0: जी
1: की आवश्यकता होती है।
0: जी जी
1: मुझे अपने आप पे गर्व हुआ और मैं धन्यवाद दिया, मैंने उस संस्थान को धन्यवाद दिया कि
0: जी
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। वो
0: तो
1: दिन है, और
0: शंकरलाल
1: आज
0: जी, आपने
1: मतलब
0: अपनी
1: साल
0: जिंदगी में
1: में
0: जो है
1: एक
0: वो
1: बार तो मैं जरूर ब्लड डोनेट करता हूँ। मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है, मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि आपको ये भगवान ने ये अवसर दिया है कि आप 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की
0: जी
1: जान
0: जी
1: बचा सकते हो। इससे बड़ी
0: तो
1: मानवता
0: मतलब
1: क्या हो
0: साल
1: सकती
0: में
1: है?
0: आप एक बार जो है वो ब्लड डोनेट जरूर करते हैं,
1: जी सर, जी
0: बहुत ही। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं शंकरलाल जी, तो उसके बाद में जो है वो आपको कितना गर्व महसूस होता है कि किस तरीके से

0: जो है कि मेरे द्वारा दिया हुआ खून जो है वो किसी की जान भी बचा सकता है, किसी के बहुत ज्यादा काम आ सकता है, तो वो फीलिंग आपने क्या महसूस करी?
1: सर मैं मतलब जब मैं जब घर में आता हूँ तो मतलब
0: जी
1: ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और ऐसा मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत बड़ा एक तीर मार लिया है
0: बिल्कुल,
1: और
0: मतलब
1: मैंने
0: एक
1: बहुत
0: पॉजिटिव
1: अच्छा
0: एनर्जी आ
1: किया
0: जाती
1: है,
0: है।
1: बहुत बड़ी मैंने अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छी खुशी मिली है कि मैं ये चीज कर पाया हूँ।
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद मैंने तय किया है कि मुझे जितने भी मेरे जो भी दोस्त वगैरह मिलेंगे उनको मैं बोलूंगा एक बार करके देखिए अच्छा लगेगा।
0: तो शंकरलाल जी बिल्कुल आपकी जो बात है इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। तो शंकरलाल जी, जैसा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो दूसरे भी जो श्रोता है जो आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी यूथ है या फिर जो भी अभी जितेंद्र जी ने हर आयु वर्ग को जो है वो मेंशन किया है, तो उस वर्ग आयु वर्ग के लोग जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो शंकरलाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
0: जी, तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस है जो कि किसी की जान बचा सकते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते जी
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में।
1: सर। थोड़ा सा लाउडली बोलने का प्रयास करेंगे प्लीज, आपसे
0: जी
1: रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है आपको आवाज?
1: जी सर नमस्कार, मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ, दिनेश सोडा।
0: जी, दिनेश जी, तो जैसा कि आपने हमारा आज का सवाल सुना ही है कि किस तरीके से जो है
1: आपने
0: वो,
1: पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, दिल से सैल्यूट करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है
0: बिल्कुल
1: और
0: धन्यवाद।
1: प्रोग्राम की थीम बहुत अच्छी, आज ब्लड
0: जी
1: डोनर
0: जी
1: डे है ना, तो मैं सभी से ये आपके मार्फत इस रेडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज ब्लड डोनेट जरूर करें, और ब्लड डोनेट करने से कभी ब्लड कम नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: ब्लड
0: बिल्कुल
1: कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि जो पानी अगर पड़ा रहता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं ना, वैसे
0: बिल्कुल
1: ही अगर
0: सही कहा।
1: ब्लड हमारे शरीर में पड़ा रहेगा
0: तो
1: तो
0: दिनेश जी,
1: काफी
0: आपकी
1: सारे
0: लाइफ में ऐसा
1: बैक्टीरिया।
0: कोई एक्सपीरियंस है ब्लड डोनेशन से
1: बिल्कुल
0: रिलेटेड?
1: वही तो बता रहा हूँ
0: जी
1: मैंने,
0: जी
1: फर्स्ट बार जब मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल गए थे तब एक बच्ची रो रही थी, छोटी सी बच्ची
0: जी जी
1: समथिंग 14-15 साल की थी वो,
0: जी जी
1: और उसको थैलेसीमिया थे है ना, थैलेसीमिया की वजह से उसको बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी,
0: जी
1: तो उसको जरूरत थी कि अगर कोई ब्लड डोनर हो और मुझे डोनेट कर पाए ताकि मेरी जान बच पाए है ना।
0: जी जी
1: उसके मम्मी वगैरह सब लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन कोई लोग उनकी बात सुन नहीं रहता, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बात 2012 की है,
0: जी जी
1: तब मैं और मेरी वाइफ वहां बैठे थे रिसेप्शन में
0: जी जी
1: वेटिंग हॉल में,
0: तो मतलब आप
1: बस
0: बता रहे हैं
1: मैंने
0: कि
1: बात
0: कोई भी
1: की,
0: ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम?
1: रेडी नहीं थे, तो फिर
0: जी
1: मेरे वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि एक
0: जी
1: बार
0: जी
1: ट्राई तो करके देखिए,
0: बिल्कुल
1: इसमें
0: सही
1: कौन सी
0: कहा।
1: आपकी जान जा रही है, आप अगर ब्लड डोनेट नहीं कर रहे तो एक बच्ची की जान जा रही है, और आप डोनेट कर रहे हैं तो
0: जी जी
1: आपकी जान नहीं जाएगी और इसकी जान बचेगी, आप एक बार ट्राई करके देखिए
0: बिल्कुल
1: प्लीज
0: सही कहा।
1: है ना। तो मैंने वो ब्लड डोनेट किया और आज उसकी वजह से मेरी वाइफ ने मोटिवेट किया, और उसकी वजह से आज जब भी वो बच्ची मिलती है
0: जी जी
1: ब्लड
0: बिल्कुल
1: रिलेशन जैसा बन गया, आज भी वो याद करती है, जब भी मिलते हैं बड़े खुश होते हैं कि आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बचने का नहीं है, ऐसा
0: देखिए
1: कुछ नहीं है, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो इसकी वजह से आज मैं 3 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ उसके बाद में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, और
1: और
0: मैं
1: सभी
0: तो
1: से ये कहूंगा
0: आपकी
1: ब्लड डोनेट
0: जो
1: जरूर करें।
0: धर्मपत्नी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने आपको मोटिवेट किया है।
1: जी, और मेरा ओ पॉजिटिव है तो सबके काम आ सकता है, मैं ओ पॉजिटिव हूँ तो जब भी मौका बनता है, जब भी
0: बिल्कुल
1: कुछ ना
0: दिनेश
1: कुछ
0: जी,
1: फंक्शन वगैरह ऐसे होते हैं तो मैं ब्लड डोनेट
0: बिल्कुल
1: जरूर
0: दिनेश जी,
1: करता
0: आपने ये सोचा कि किस तरीके से जो है वो मैं एक दूसरे की
1: हूँ।
0: जिंदगी जो है, एक दूसरी जिंदगी जो है वो अपने बिहाफ पर बचा सकता हूँ, तो इस बात के लिए जो है वो आपके लिए तालियां तो जरूर बजनी चाहिए।
1: जी सर थैंक यू।
0: तो दिनेश जी, आपने अपना बहुत ही शानदार जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगर आप भी जो है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल मिला सकते हैं हमारे इस नंबर पर। तो लगता है
1: हेलो
0: कि नंबर मिलाने से पहले ही जो है हमारे पास
1: हेलो
0: कॉलर आ चुके हैं। हेलो
1: हेलो, हाँ जी नमस्ते
0: जी, नमस्ते,
1: नमस्ते,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में।
1: जी स्वागत,
0: जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: नाम बताइए। मेरा नाम नत्थी राम, बाड़मेर जिले से।
0: जी, तो नत्थी राम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पीछे जो रेडियो बज रहा है उसका वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दीजिए।
1: जी कर दिया सर।
0: जी नत्थी राम जी, तो आज का आपने जो है वो हमारा सवाल सुना ही होगा कि आपने जो है वो कभी ये एक्सपीरियंस लिया है ब्लड डोनेट करके? क्या
1: क्या सर,
0: आपने कभी ब्लड डोनेट किया है?

0: नहीं सर।
1: जी, तो क्या कभी आपके मन में कोई फियर रहा है या फिर कोई ऐसा भ्रम था जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाए?
0: ऐसा ध्यान नहीं करता।
1: जी, मतलब आप बता रहे हैं कि आप इस बात से जो है वो अपरिचित थे।
0: सर
1: जी, मतलब आप इस बात से अपरिचित थे। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आप इस चीज के लिए जो है वो आगे आना पसंद करेंगे?
0: हाँ जी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल नत्थीराम जी, के आप भी जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हमें कि कभी आपको मौका नहीं मिला, और हम आशा करते हैं कि आपको भी जो है वो आगे मौका मिले और इसी तरीके से जो है वो आप किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए जो है वो अपना रोल निभाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

老弟。

इसी के साथ चलते हैं श्रोताओं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी कारण से जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो,

0: बातचीत। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार
0: जी, नमस्कार।
1: जी। जालाराम जी बालोतरा से बोल रहे हैं।
0: जी, जालाराम जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपने अपनी
1: नमस्कार
0: लाइफ में जो है वो कभी ब्लड डोनेट किया है?
1: जी। हमने तो नहीं किया है कभी जी।
0: जी, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि
1: इच्छा तो होती है, कभी करते हैं डोनेट भी ना। हम तो कभी किया ही नहीं, कहाँ वहां पे गए ही नहीं कभी।
0: जी, तो आपको किस चीज ने कभी रोका? क्या आपको लेके कोई, इस बात को लेकर जो है वो कोई फियर है या फिर कोई भ्रम है मन में?
1: हाँ
0: जी, तो आशा करते हैं कि
1: जी
0: आप
1: है
0: भी जो है
1: जी
0: वो
1: है, लेकिन
0: आगे
1: लेकिन
0: ब्लड
1: है
0: डोनेट
1: तभी
0: जरूर
1: आप तो
0: कीजिए।
1: खेती बाड़ी है, हम तो गाँव में रहते हैं, कभी वहां पे गए ही नहीं लैब पे।
0: जी, पर आजकल तो सुनने में आया है कि गांव गांव तक भी जो है वो पहुंच चुकी है काफी
1: हाँ
0: सारी
1: गांव गांव
0: संस्थाएं।
1: पे है,
0: जी
1: सुन
0: जी
1: रहे लेकिन सुनने भी आ रहे हैं, बना हम तो कभी गए नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, तो आपका हमारे साथ
1: होगा
0: जुड़ने के लिए बहुत
1: इच्छा
0: बहुत
1: होगा, कभी
0: धन्यवाद,
1: जाएंगे
0: और
1: हम गांव
0: हम
1: में,
0: आशा
1: लेकिन
0: करते हैं
1: जाएंगे
0: कि आप
1: गांव
0: जो है
1: में।
0: वो उन संस्थानों से आगे जुड़ते रहिए और आपको भी कभी ये मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
5: इसी के साथ श्रोताओं, चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो।
6: हेलो
5: जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम मनोहर गोयल है।
5: जी जी, मनोहर जी, तो जैसा कि आपने हमारा आज का जो सवाल है वो सुना ही होगा।
6: जी
5: जी, तो आपने कभी अपनी लाइफ में जो है वो ब्लड डोनेट किया है?
6: हाँ, मैंने 4-5 बार किया है अपना ब्लड।
5: जी जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा ब्लड डोनेट करने को लेकर?
6: कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, करना चाहिए मेरे हिसाब से ब्लड डोनेट।
5: जी जी,
6: और 40-45 की उम्र से पहले ब्लड डोनेट करना चाहिए।
5: जी जी बिल्कुल। और आजकल एक मनोज जी, हमने ये भी चीज देखी है कि वैसे तो काफी सारे लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो काफी सारे युवा है वो रक्तदान को लेकर जो है वो जागरूक नहीं है, तो उन्हें जो है वो इंस्पायर कैसे किया जा सकता है?
6: नहीं, वो एक्चुअली ये कैंप अगर जो लगते हैं उसमें

0: हैं काफी लोग
1: जी जी
0: और हम लोग भी जैसे कई बार यहाँ पाल बालाजी में लगते थे कैंप
1: जी जी
0: तो वहां भी जाके दे दिया आते थे
1: जी जी
0: और अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ये देना चाहिए
1: जी जी तो आपके
0: थोड़ा
1: परिवार में
0: फ्रेश
1: मनोहर जी
0: थोड़ा
1: आपके
0: आगे
1: अलावा
0: फ्रेशनेस महसूस करता है।
1: जी जी तो आपके अलावा जो है वो आपके बच्चे या फिर आपके जो रिश्तेदार है वो भी ब्लड डोनेट करते हैं?
0: हाँ मेरे बेटे को भी मैंने एक दो बार कैंप में भेजा है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो अपने बेटों को भी जो है वो इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं।
0: जी जी
1: और साथ ही साथ
0: एक
1: जो
0: चीज मैं सर पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से,
1: जी जी
0: ये एक्चुअल में हम लोग जैसे ये ब्लड संस्थाएं वगैरह करती है डोनेट,
1: जी जी
0: लेकिन जरूरत पड़ने पे कई लोगों का पैसा लगता है इसमें
1: जी
0: और वो पैसा भी बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी

0: और वो पैसा भी बहुत ज्यादा होता है,
1: जी,
0: तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए होना चाहिए। वैसे तो ये सेवाएं जो है वो बिल्कुल निशुल्क ही रहती है, कि किस तरीके से जो है वो, ये एक तरीके की मेरा मानना है मनोहर जी कि ये मानव सेवा है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम किसी की जान बचाएं
0: जी,
1: जितना हमसे हो सके।
0: अप्रोच जिसकी होती है, किसी की
1: जी
0: पहचान होती है, वो तो अरेंज कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिसका कोई नहीं है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मनोहर जी। तो आपका जो ये मैसेज है वो हम डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: थैंक यू। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो हेलो,

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कहते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ यूनिट खून की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव के दौरान या कैंसर के इलाज, थैलेसीमिया और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो मरीजों के लिए भी जो सेफली ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके द्वारा दान किया गया एक यूनिट खून जो है वो कई सारी जिंदगियाँ बचा सकता है। और इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी सर, नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
4: हेलो
3: हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें?
4: नंद किशोर चौहान, प्रताप नगर से सर।
3: जी जी, नंद किशोर जी। तो नंद किशोर जी, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में जो है वो ब्लड डोनेट करके जो एक्सपीरियंस कभी ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं?
4: हाँ सर,

0: एक बार किया सर।
1: जी, आपने 3 बार किया है
0: हाँ सर।
1: जी। तो ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ नंद किशोर जी? आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील हुई
0: अरे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा।
1: जी? क्योंकि एक माइंड मेकअप होता है कि नहीं, मैंने जो है वो उस इंसान की जिंदगी बचाई जिसे मैं जानता भी नहीं हूं, या जिसे जानता हूं तो मोस्ट ऑफ यही रहता है कि जिसे हम नहीं जानते, किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी जिंदगी जो है वो बचाने के लिए हम डोनेट करते हैं
0: हाँ सर, सही बात।
1: जी। तो आपने जो 3 बार जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने हर वर्ष किया है या फिर अभी तक जो है वो आप अपने पूरे करियर में जो है वो 3 बार ही किया
0: नहीं
1: है?
0: सर, कभी कभी कभी, मतलब 4-5 साल में 3 बार किया था।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो अपनी तरफ से जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो संस्थानों को दिया, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।

तो श्रोताओं, आज का जो एक कार्यक्रम है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा हम सभी के लिए, जहां पर आपने सुना एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू कि किस तरीके से उन्होंने जो एक्सपीरियंस है अपने और लोगों द्वारा किए गए वो शेयर किए उन्होंने। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सके आप ब्लड डोनेट कीजिए, और कहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार जो है वो इंसान को ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी जो भी कोशिकाएँ हैं RBC जो है वो वापस जो है वो नए सिरे से बनने लगती है, तो एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की मदद भी कीजिए। और इसी के साथ जो है हम सभी जानते हैं कि शाम के ठीक 6 बजने वाले हैं और अब हमें लेनी होगी आपसे इजाज़त। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की मदद कीजिए। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: इस समय शाम के 6 बजे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से

0: जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

आदाब नमस्कार गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के बज चुके हैं 6 और सूर्य नगरी के आसमान पर ढलती सूरज की लाली के साथ आपकी खिड़की से एक ठंडी सी हवा गुजरी होगी। इसी खूबसूरत शाम में आपके रेडियो सेट पर दस्तक दे चुकी है आपकी दोस्त आपकी रेडियो बड़ी मोनिका। आकाशवाणी के FM सन सिटी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बेहद खास शो गुड इवनिंग जोधपुर में।

सुबह जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां बिखरी धूप ने मुझे अचानक से ऐसे गलियारों में लाकर खड़ा कर दिया जहां से जिंदगी बहुत हसीन थी, वहां बहुत सुकून था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबके पसंदीदा टाइम, हमारे 90s की। जी हाँ, वो दौर था जब हमारे दिन की शुरुआत अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि रेडियो पर बजते हुए गानों से होती थी। और हमारा यूथ, उनका तो क्या कहना दोस्तों, हमारा युवाओं का वो दौर तो पूरी तरह से बॉलीवुड के जादुई रंगों में रंगा था।

उसे याद कीजिए 90s का वो क्रेज जब सब कुछ बॉलीवुड वाला होता था, एकदम फिल्मी. आज भले ही लड़के जिम जाकर सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं, लेकिन उस दौर के हर लड़के का एक ही सपना था, मैंने प्यार किया वाली बॉडी बनाना. जी हाँ, लड़कों के वार्डरोब में वो ब्लैक लेदर का जैकेट होना तो जैसे कंपल्सरी था, और साथ में वो काला चश्मा, सलमान खान का वो शर्टलेस होना. सलमान खान का वो एक्शन जोधपुर के क्या पूरे देश के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जब सलमान खान की कोई भी मूवी आती थी तो तालियों और सीटियों से कान के पर्दे फट जाते थे. और दूसरी तरफ रोमांस के किंग हमारे शाहरुख खान. बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक.

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में। प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं हमारे प्यारे 90s के दौर की। 90s की बात हो और शाहरुख की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, शाहरुख का वो बाहें फैला कर खड़े होने का अंदाज, जिसने हमारे देश की ना जाने कितने राज को अपने सिमरन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साल 1995 में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, तो उस फिल्म ने ना सिर्फ हमें प्यार करना सिखाया, बल्कि हमारे जीने का अंदाज ही बदल दिया। राज का वो गिटार बजाना और सिमरन का वो खूबसूरत सा एथनिक लुक, कॉलेज का शायद ही कोई ऐसा लड़का या लड़की होगी जिसने उस वक्त में खुद को राज या सिमरन को ना ढूंढा हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ कपड़े ही नहीं दोस्तों, बल्कि हमारी बातचीत का लहजा, हमारी सादगी, सब कुछ उस वक्त के सिनेमा से प्रेरित थी। कुछ कुछ होता है मूवी तो आपको याद ही होगी, और उसकी अंजलि, बिल्कुल दोस्तों अंजलि को देखकर ना जाने कितनी लड़कियों ने अपने बालों का कटिंग स्टाइल चेंज करके बॉब कट करना रखना शुरू कर दिया था। हाथ में वो कूल सा पेंडेंट और दोस्तों के बीच फ्रेंडशिप बैंड बांटने का जो रिवाज उस वक्त चल गया था, उसका तो क्या ही कहना।

दोस्तों 90s के प्यार, इश्क और मोहब्बत का भी अलग ही मजा था, अलग ही एक सुकून भरा एहसास था। जहां आज के दौर में प्यार सोशल मीडिया के ब्लू टिक और लाइक्स पे नापा जाता है, वहीं हमारे 90s के दशक में प्यार का मतलब था क्रश की एक झलक पाने की। जी हाँ, क्रश की एक झलक पाने के लिए लोग तपती दोपहरी में साइकिल पर मोहल्ले के चक्कर काटते थे, और वो एक ऐसी दीवानगी थी जिसमें सब्र भी था और एक अजीब सा सुकून भी। तो चलिए, यादों का ये सिलसिला गुड इवनिंग जोधपुर में यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है उस दौर की एक बेहद ही खूबसूरत नगमे को सुनने का, जिसने हम सबको पहली बार मोहब्बत के एहसास से रूबरू कराया था। आमिर खान और आयशा जुल्का की मासूमियत सी सजा का ये गीत, आइए सुनते हैं पहला नशा पहला खुमार।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
5: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री। 40 लाख करोड़ से भी अधिक के

0: मुद्रा लोन से
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में, जहां मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो बड़ी मोनिका, और आप सुन रहे हैं एफएम सन सिटी। दोस्तों, जो गाना आपने सुना पहला नशा पहला खुमार, इस गाने को जितनी बार भी सुनो दिल वही 90s के एरा में और उसकी मासूम सी सुबह में जाकर ठहर जाता है। दोस्तों, गाना सुनते सुनते मुझे याद आया कि आज की जनरेशन के पास आईफोन है, प्ले स्टेशंस हैं, लेकिन क्या वो उस वीडियो गेम पार्लर वाले क्रेज को जानते हैं? याद कीजिए जब मम्मी से छुपकर पॉकेट मनी बचाकर बचे हुए एक एक रुपए से, एक एक सिक्के से जो गुल्लक में हम इकट्ठा करते थे, उनको निकाल कर हम मारियो और कॉन्ट्रा खेलने के लिए दौड़े चले जाते थे। वो रिमोट कंट्रोल वाली कार जिसके पास होती थी, वो तो भाई साहब उसके पीछे तो पूरा मोहल्ला भागता था। और याद है आपको वो वॉकमैन, उसे कैसे भूल सकते हैं हम? जिसके पास वॉकमैन होता था वो उस वक्त अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता था। कैसेट की रील अगर जरा से भी फंस जाती थी तो पेन या पेंसिल डालकर उसे गोल गोल घुमाना, ये तो बड़े मैकेनिकल इंजीनियर के टास्क से कम नहीं था। आज जब सारे म्यूजिक ऐप्स हैं उन पे लाखों गाने हैं, पर उस वक्त एक कैसेट में अपनी पसंद के 10 गाने रिकॉर्ड करवाना का जो वो सस्पेंस और मजा था ना, वो आज की जनरेशन कभी नहीं समझ पाएगी। उसका वो मजा वो कभी भी नहीं ले पाएगी।

1990s के संडे की बात की जाए तो वो कुछ और ही हुआ करता था। जहां आज के संडे का मतलब है देर तक सोना या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी सीरीज देखना, लेकिन हमारे 90s के एरा में संडे की सुबह मतलब जंगल जंगल बात चली है, पता चला है और चंद्रकांता। और शाम के 12 या 4 बजे जब टीवी स्क्रीन पर उगते हुए सूरज के साथ शक्तिमान चक्रव्यूह की तरह घूमते हुए आता था तो मजाल है कि गलियों में कोई बच्चा नजर आ जाए। सड़कें ऐसी सूनी हो जाती थी जैसे कर्फ्यू लग गया हो। गीता विश्वास और तमराज किलविश की बातें हफ्तों तक स्कूल के लंच बॉक्स पर होती थी। बिल्कुल दोस्तों, उस वक्त जो संडे हुआ करते थे वो पूरा संडे या तो घर में टीवी पर कुछ शोज देख के और उसके बाद शाम होते होते दोस्तों के साथ मस्ती करते करते बीत जाया करता था। और वहाँ अगर बात करें आज वाले संडे की, आज कल वाले संडे की, तो हम सब सिर्फ और सिर्फ वेट करते हैं संडे का ताकि हम रेस्ट कर सके, हम सिर्फ और सिर्फ नींद लें और फोन चलाएं।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों वो दौर बेशक सादा था लेकिन उसमें जो अपनापन था वो आज के इस डिजिटल दौर में कहीं खो गया है। आज हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो टेबल पर चार दोस्त होते हैं और चारों के हाथ में होता है उनका स्मार्टफोन। सब साथ होकर भी जैसे कहीं दूर हैं। पर हमारे 90s के एरा में नोटिफिकेशन की कोई टिंग टिंग नहीं होती थी, सिर्फ यारों की महफिल जमती थी। कॉलेज बंक

करके थोड़ी दूर कहीं थड़ी पर बैठना और जेब में सिर्फ 10 का नोट होना। जी हाँ, सिर्फ 10 का नोट। और 10 का नोट होने पर भी खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझना, क्योंकि तब पैसे कम थे पर खुशियां बांटने के लिए यार बहुत थे।

दोस्तों, 90s की बात करें और लैंडलाइन फ़ोन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, लैंडलाइन फ़ोन की चिन चिन याद है आपको? आज तो प्राइवेसी के नाम पर फ़ोन पर पासवर्ड लगे हैं, फिंगरप्रिंट लगे हैं, पर उस दौर में जब घर के ड्राइंग रूम में रखे उस इकलौते फ़ोन की घंटी बजती थी तो पूरे घर की धड़कन थम जाती थी। अगर क्रश का फ़ोन आ गया तो दिल हलत में आ जाता था दोस्तों, कहीं पापा ने उठा लिया तो। और वो डर, वो सस्पेंस, और वो छुप छुप कर बात करने का रोमांच आज के सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म में कहाँ। और अगर फोन पर बात ना हो पाए तो फिर सारा

सहारा बनता था हमारा कागज का खत, वो ग्रीटिंग कार्ड्स, वो खुशबू वाले लव लेटर जिन्हें डायरी के बीच संभाल कर रखा जाता था। आज की कॉपी पेस्ट वाले मैसेज में वो जज्बात कहाँ जो उस वक्त खुद की लिखी दो लाइनों में होते थे।

बिल्कुल दोस्तों, उस वक्त का रोमांच होता था बिल्कुल छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करने का। दोस्तों, शाम के ढलते ही जोधपुर की गलियों का वो नज़ारा। आज के बच्चे कमरों में बंद होकर आईपैड पर गेम खेलते हैं, लेकिन हमारे दौर में शाम के 5 बजे मोहल्ले के सारे दोस्त कॉलोनी के ग्राउंड या गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर इकट्ठा हो जाते थे और 3 ईंटें खड़ी करके विकेट बनाते, और जिसके पास बैट होता वही टीम का कप्तान। वन टिप आउट, और जिसका बैट पहली उसकी बैटिंग, जैसे अजीबोगरीब रूल्स होते थे। थक हार कर जब रात को घर लौटते थे तो दूरदर्शन पर पूरा परिवार साथ बैठकर चित्रहार देखता था। एक ही टीवी, एक ही कमरा और पूरा परिवार। सच में तकनीक ने हमें सहूलियत तो बहुत दी, लेकिन वो जो सादगी और सुकून की एक महक थी ना, वो हमसे छीन ली।

दोस्तों आज दोस्त आप सब ने और मैंने मिलकर जोधपुर के इस शाम को वाकई में 90s के एरा के उस जादुई सफरनामे में बदल दिया जहां वक्त ठहर सा गया था। श्रोताओं घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब गुड इवनिंग जोधपुर के इस सफर को यही थमना होगा। चलते चलते बस यही कहूंगी कि वक्त बदल गया है, इंसान बदल गए हैं और बदल गया है जिंदगी को जीने का सलीका।

पर आज भी जब पलटते हैं 90s के पन्ने तो याद आता है वही था खुश रहने का असली तरीका। आज भले ही हमारे पास सब कुछ डिजिटल है, लेकिन वो जो सादगी थी, अपनों की जो गर्माहट थी, उसे अपने भीतर हमेशा जिंदा रखिएगा। फ़ोन की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलिए, कभी पुरानी एल्बम खोलिए, किसी पुराने दोस्त को बिना किसी काम के कॉल कीजिए और फिर खुल कर जी भर कर उससे बातें कीजिए और अपनी उस मासूमियत को याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी मोड़ पर कुछ नई पुरानी यादों और सदाबहार गानों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के FM सेंसिटी पर। तब तक के लिए अपनी दोस्त आपकी अपनी रेडियो बड़ी मोनिका को दीजिए विदा। आप सब मुस्कुराते रहिए, अपनों के करीब रहिए और सुनते रहिए FM सनसिटी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव, माफ कीजिएगा, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन है ये धरा

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और आईएमए के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी

की थी। अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय

लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखे नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जेते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबदनी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे रात भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ, बैठ बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊँ।
1: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी

0: भी बहुत बड़ी है क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
0: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी। और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान रहे हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरफ पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
0: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
0: हाँ हाँ, रूप सिंह।
1: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी। अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
0: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
1: है? बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो।
0: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाली चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाको चने चबवा दूंगा।
0: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
0: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
0: अच्छा,
1: राम राम।
0: अच्छा राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
0: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े, मैं जहाँ तहाँ तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम फूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूआ, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है।
3: क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आते हैं। भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
1: अरे मंगरू,
3: मंगरू ओ क्या बात है माधो,
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ देख माधो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना
3: जी।
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी।

0: माफ कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
1: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरह आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची।
0: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म
1: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी, मालिक मालिक,
1: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला।
0: नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, कुछ भी दया कीजिए, दया कीजिए।
1: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
2: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: 3,000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
2: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
2: अच्छा भैया, जय राम जी।
0: पटवारी जी, आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: वो क्या पटवारी जी है?
2: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा क्या
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
2: देखो
0: क्या करूँ,
2: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन
2: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
0: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
2: कौन से रुपए भाई?
0: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
2: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
0: काहे?
2: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
0: मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो।
2: अच्छा नहीं, ये लो मंगरू।
0: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
2: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर है मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
2: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
2: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
2: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा।
2: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा।
2: कल ही तुम्हें

0: डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
0: हाँ भाई।
1: सच सच कह रहे हो पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। हाँ। और रुपया मिल जाने के बाद? हाँ,
1: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आगे हैं, जल्दी से चलिए।
1: आगे पंडित जी? हाँ, चलिए, आइए पटवारी जी, आइए आइए।
0: चलो चलो।
3: कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन

0: किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री

0: रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे।

हैं, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

0: 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

0: सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।
1: भगवान

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: ही थे।
1: संघर्ष में जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए

भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: विभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्नाडे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरोसामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

مرزا غالب غلام محمد فلم افسر پنڈت نریندر شرما سچن دیو برمن

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन

0: को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार, मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशियन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के